आशा जी ने मेरे सैकड़ों हिट गाने गाए हैं, जिनमें से कई गानों पर आशा जी को बेस्ट सिंगर के अवार्ड भी मिले हैं। ये मेरी ही आशा नहीं, सारी दुनिया के अनगिनत संगीत प्रेमियों की आशा है कि आशा जी की सुरीली आवाज़, इनकी गायकी, इनकी पॉपुलैरिटी इसी तरह दिन पर दिन उन्नति के शिखर पर चढ़ती जाए। आशा जी एक महान कलाकार हैं और मैं इनकी कला व इनके बिहेवियर से कितना प्रभावित हूँ ये आशा जी खुद जानती हैं, इनका मन जानता है।

श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आशा

आषाढ़ मास की 25वीं तिथि। तदनुसार 16 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं लीजिए, आइए अब एक झलक डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों पर। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। भावना नायर आपके साथ होंगी ये कार्यक्रम लेकर। श्रोता सुनेंगे 7:02 पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर निखिल कुमार के साथ। इसके बाद होगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने 9:02 पर निखिल कुमार ये कार्यक्रम लेकर आएंगे।

श्रोता वेस्टर्न म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं 10:02 पर अदिति बिष्ट के साथ। इसके बाद 11:02 पर आप सुनेंगे बबीता रावत के साथ कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम प्ले इट कूल आप सुन सकते हैं 12:02 पर। बबीता रावत आपके लिए लाएंगे 1:02 पर कार्यक्रम

आशियाना आप सुनेंगे 2:02 पर गीतिका उनियाल के साथ। मीना जैन लेकर आएंगी रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम 3:00 और इसके बाद होगा 4:02 पर संदेश टू सोल्जर्स और श्रोता सुनेंगे सिटी लाइट कार्यक्रम 5:02 पर।

0: कार्यक्रम का 6:02 पर गीता चौधरी के साथ। शुभांकर लेकर आएंगे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक 7:02 पर, और उसके बाद होगा म्यूजिक मस्ती 8:02 पर। आपकी याद आती रही आप सुन सकते हैं 9:02 पर, प्रियंका त्रिपाठी ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी। और इसके बाद होगा 11:02 पर कार्यक्रम रंगे महफिल, प्रियंका त्रिपाठी के साथ ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। तो ये थी एक संक्षिप्त सी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 6 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
1: FM Dragoban 103 megahertz, news, music and entertainment. FM Dragoban FM 103 megahertz.
2: Good morning, dear listeners. This is Akashvani Kohima, and you're tuned in to FM Dragoban at 103 megahertz.
1: FM Dragoban
3: 103 megahertz,
1: news, music and entertainment.
3: This is FM Dragoban
1: FM 103 megahertz.

0: Soap Swagger Health Centers de BP laga free checkup, treatment aro kau phal thakibo laga motop PSA. BP laga kunba sawal thakile, toll free number 1-800-1166-66 de call koribi.
1: BP haribo, desh jitibo.
2: Itu jankari NTEP ber PSA.
3: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
3: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
4: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: मेला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, 3 शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, तालध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
4: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
5: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
6: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा IIT के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात

0: इमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में चार दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
1: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत। सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी। ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet clears two elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved two elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43-kilometer long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi City at a cost of around 11,000 crore rupees.
4: The project is a fully elevated 6-lane and 4-lane corridor along the Varuna River. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees and is expected to be completed in approximately 4 years. The fully elevated 6-lane corridor running alongside the Ganga River, it will span 46 kilometers and is estimated to be built at a cost of 14,448 crore rupees.
3: 448 crore rupees. The Union Cabinet also approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
4: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
3: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The cabinet also gave a nod to two multi-tracking projects covering 4 districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The Railway Ministry has launched a new beta version of Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. The IRCTC has made 4 major improvements in this new beta version. First, it does not have unnecessary captchas, pop-ups, flashing graphics or other distracting elements. Second, passengers can view seat availability across all classes. Third,

0: 770-224-3036. আমি খালাম ওদের ফার্স্ট কলার থাকি আছে। হ্যালো,
1: জয় মাতা দি।
0: জয় মাতা দি,
1: মেরা নাম হ্যায় পূরণ বর্মা ওর মে আপসে বাতচিত কর রহা হুঁ, ডিস্ট্রিক্ট জয়পুর রাজস্থান, গাঁও কা নাম অন্তমেল হোগলা।
0: বুরান বর্মা, প্রোগ্রাম মে স্বাগত হ্যায় ওর বতাইয়ে আজ কা দিন
1: কাইসা রহা। জি তো মে আজ সুনুঙ্গা ফিল্ম কা নাম হ্যায় অনজানা।
0: অনজানা
1: জি,
0: ওকে। और कौन सा वाला गीत अनजाना से?
1: इसमें गाने के बोले रिम जिम के गीत सावन गाए।
0: अच्छा, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ अनजाना। अनजाना मेरा म्यूजिक बैंक में सिर्फ अनजाना अनजानी फिल्म है, अनजाना नहीं है। और कोई दूसरा फिल्म होगा?
1: कोयला।
0: कोयला,
1: हाँ जी,
0: मैं ढूंढ रहा हूँ। कोयला भी नहीं है,
1: नहीं है,
0: सॉरी।
1: फिल्म का नाम रहेगा मृत्युदंड।
0: मृत्युदाता,
1: मृत्युदंड। चलो मृत्युदाता में कौन सा गाना रहे, कौन कौन से गाने?
0: मृत्युदाता में है अपने बाप का क्या, एक है हमारे देशवा के, एक है इलालू इलालू, एक है कभी खुशियों के सरकम, एक है नाना नाना नाना रे, एक है और दक्षुम, एक है
1: पकजुम वाला चला दीजिए।
0: अच्छा, मतलब रिमजिम का मतलब नजर में आप सुनना चाहता हूँ, राइट?
1: हाँ जी, हाँ जी सर।
0: आज क्या बारिश हो रहा है क्या?
1: जी बारिश का इंतजार है सर, शायद गाना सुन के बारिश आ जाती इसलिए वो गाना बजवा रहा था, पर आज क्या कर गाना ही नहीं मिला।
0: ठीक है, तो थैंक यू सो मच।
1: और कुछ दोस्तों को याद कर ले।
0: जी जी, ब्रॉन वर्मा, प्लीज गो अहेड।
1: सबसे पहले आप है,
0: थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त राकेश, अमल है, बिमल है, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, रमेश पात्र है, और गोल्डी भाई है, और जितने भी कॉलर कोलमा पे आपके बातचीत करेंगे लास्ट तक उन कॉलरों के लिए।
0: अच्छा ठीक है। और पुरान वर्मा जी,
1: जी
0: बताइए आप, मतलब आपको याद में है ना कब कब आकाशवाणी कोहिमा का ये फोन इन प्रोग्राम चल रहा है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: कब कब है पता दीजिए
1: जी, इसके माध्यम से बताऊंगा। और सर आपने जैसे कार्यक्रम चलाते हैं तो बीच बीच में आप दो तीन बार नंबर भी बताया करो, ताकि नए श्रोता बाहर से और भी जुड़ेगा जो लाइव कॉलिंग पहली बार सुन रहे हो कार्यक्रम।
0: हाँ राइट, बताइए
1: जी। इसमें जैसे आज गुरुवार को होता है 11:30 से 12:30
0: जी,
1: शनिवार को होता है 11:30 से 12:30
0: जी,
1: और मंगलवार को होता है 11:30 से 12:30
0: जी,
1: और बुधवार को होता है 6:00 से 7:10 तक
0: जी,
1: सोमवार को होता है 6:00 से 7:10 तक
0: जी,
1: और बुधवार शुक्रवार को भी होता है। तीन टर्म पे होता है शाम को और तीन टर्म होता है सुबह।
0: क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आपसे बार हुआ बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही बनाते रहिए और सुनो आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: ओके, यू वेलकम, बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स, बुरन सिंह वर्मा राजस्थान ब्रा मिखन लगा रेगुलर लिसनर थकी आज और ताई त्या कुआ निशना मिखन लगा 6 times एक हफ्ता दे লাইভ ফোন ইন প্রোগ্রাম থাকি আছে, 3 times ডিউরিং দ্য ডে টাইম এইটো নিচিনা টাইম দে, আর 3 times ডিউরিং দ্য ইভিনিং 6:00 to 7:10 PM তাক। আর তাতে আপনি কানি 0370-224-3036 তাদের কল করি আপনি লাগা গীত রিকুয়েস্ট করব পারব। তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, দি আছে মৃত্যুতাতা ফিল্ম রা অভিজিৎ আর পূর্ণিমা ওয়াস্তে, মিউজিক দিছে আনন্দ আর মিলিন্দ, লিরিক্স সমীয় শুনি কিনা এনজয় করবি।

0: Well, my dear friends, I'm calling with the next caller. Thank you. Hello.
1: Hello, sir. Namaskar.
0: Hello, namaskar. Who is calling?
1: जी ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: ओके भगवान सिंह परमार, आपका मैं स्वागत है और बताइए आज कौन सा वाला गीत सुना जाऊंगा?
1: सर जी मैं बताता हूँ एक सेकंड में आपको, गीत काफी में से देखना पड़ेगा सर, मैंने आज पहले से नहीं सोचा।
0: अच्छा
1: जी सर आप सुना दीजिए, रोटी कपड़ा मकान।
0: रोटी कपड़ा मकान,
1: गाने के बोले आए हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी।
0: हाय हाय लता मंगेशकर का वश में
1: जी।
0: ओके और पता है किस किस को ये डेडिकेट करना चाहूंगा?
1: जी सर हम पहले तो गजराज लोधी जी हैं, शिवा लोहट जी हैं, तनुश्री किया है, अंजलि भस्मतारी हैं, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी, रमेश पात्रे, भाईकन मुंडा जी हैं, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, आशुतोष जी हैं, अविनाश जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, सावनकर गंगाधर जी, इन सबके साथ सुना जाएंगे सर आपको डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू सो मच। तो सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग। ओके
1: धन्यवाद सर।
0: ओके यू वेलकम। बाय। तो माय डियर फ्रेंड्स भगवान सिंह बर्मार मिखन लगा रेगुलर लिसनर थकी आसे मध्य प्रदेश पर दै रिक्वेस्ट कर लगा गीत मिखन होनी अब रोती कपड़ा और मकान फिल्म रा लता मंगेशकर वस्ते म्यूजिक दिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लिरिक्स वर्मा मलिक होनी के ना एंजॉय कर भी माय डियर फ्रेंड्स।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बेल्जियम में आयोजित तीसरे भारत यूरोपीय संघ व्यापार सम्मेलन में भाग लिया। सरकार ने ईंधन निर्यात की समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त शुल्क में बदलाव किया है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई। केरलम का सबरीमला पहाड़ी मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुल गया है। अमेरिका ने होमुर्ज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। दक्षिण कोरिया के सेंट्रल बैंक ने आज 3 साल से ज्यादा समय के बाद पहली बार अपनी ब्याज दर बढ़ाई है। इसका उद्देश्य बड़ी महंगाई से निपटना है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा के कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। और खेलों में अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने चीन की हान यू को सीधे सेटों से हराया है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। अब हम आपको श्री जगन्नाथ मंदिर हौज खास नई दिल्ली के लिए चलते हैं, जहां से आप रथ यात्रा महोत्सव का आंखों देखा हाल सुनेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक राय अंग्रेजी में। आइए श्री जगन्नाथ मंदिर हौज खास नई दिल्ली चलें।
2: नमस्कार, जय जगन्नाथ। इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम उपस्थित हैं राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हौज खास के श्री जगन्नाथ मंदिर में। यहाँ जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 48वीं बार ये आयोजन किया जा रहा है। भक्त वत्सल पुरुषोत्तम चक्रधर दारु ब्रह्म चकाडोला नीलाद्री नाथ आज पतित पावन स्वरूप में भक्तों और श्रद्धालुओं को दर्शन देने स्वयं मंदिर से बाहर आ रहे हैं। यहाँ का उल्लास और जोश देखते ही बनता है। चहुं और जय जगन्नाथ के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। भक्त हाथ में जगन्नाथ जी के चित्र थामे हुए हैं, रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए हैं, साथ ही भक्ति भाव यहाँ दिखाई दे रहा है। श्री नीलाचल सेवा संघ ने प्रभु भक्ति में ये आयोजन किया है। मंदिर परिसर के ठीक सामने रथ यात्रा मार्ग पर कुछ ऊंचाई पर हमारा कमेंट्री बूथ बनाया गया है। यहाँ से भव्य रथ के दर्शन हो रहे हैं। मंदिर और कमेंट्री बूथ के बीच से जो पथ है वहां से रथ रवाना होगा प्रभु का। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ अपने तकनीकी दल और कार्यक्रम दल के साथ यहाँ कॉमेंट्री बूथ पर उपस्थित हूँ। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी हैं, डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्र, माननीय महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। आप लंबे समय से मंदिर समिति से जुड़े रहे हैं और इस भव्य आयोजन का आप हिस्सा रहे हैं, अपनी सेवाएं यहां लगातार देते रहे हैं। ये आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से सुन रहे हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल पर्वत पर निवास करने वाले नित्य और परमात्मा स्वरूप भद्र भाता बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान प्रभु जगन्नाथ को हम बारंबार नमन करते हैं।
3: जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्रायाम जगन्नाथाय नमः। Greetings and namaskar to everyone tuned in to Akashvani Delhi. Today we are here at the Sri Jagannath Temple, Hauz Khas, New Delhi, where in a short while from now, the annual Rath Yatra of Lord Jagannath will start. And what a lovely sight it is, as my

0: colleague Neelam described, there is so much enthusiasm among the devotees who are here braving the hot sun, and it's a very humid day here today, but we see thousands and thousands of people as far as our eyes can go, and everyone who have come here today have come for the love and affection for the Lord of the universe, Lord Jagannath. And today is one day, dear listeners, that the Lord comes out of the Garbhagriha, that is the Sanctum Sanctorum, and he also joins his devotees. And we can see that the beautiful Rath, which is bedecked in the colors of red and yellow, which is the colors of the Rath of Lord Jagannath of Puri, and in a short while from now the Rath Yatra will start. As we all know that the Rath Yatra is an important Sanatana Dharma festival which takes place on the Shukla Dwadashi of the month of Ashad, and to tell us the importance of the Rath Yatra, we have Dr. Mrityunjay Mohapatra, who is also the Director General of Indian Meteorological Department. And Dr. Mohapatra will explain the importance of the Rath Yatra.
1: Nilachala Nivasayo Nityayo Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathayo Te Namaham Jai Jagannath. Jo Bhagwan Nilachal Me Nivas Karte Hain, जो शाश्वत और परमात्मा है, और जो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ है, उन भगवान जय जगन्नाथ को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। कृपा परावर सजल जल दम श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुर दमल पंके रुहमुख सुरेन्द्री आराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जिनकी करुणा सागर की तरह असीम है, जो जिनकी सुंदरता काले पानी से भरे वर्षा बादलों की तरह अपार है, जो रोमा यानी देवी लक्ष्मी और वाणी यानी देवी सरस्वती दोनों को आनंदित करते हैं, जिनका मनमोहक चेहरा पूरी तरह से खिले हुए पवित्र कमल की सुंदरता को दर्शाता है, जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवताएं करते हैं, और जिनकी अलौकिक महिमा का गुणगान श्रेष्ठ शास्त्रों द्वारा किया जाता है, वही भगवान श्री जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अभी रथ यात्रा के लिए आज आषाढ़ मासे शुक्ल पक्ष से द्वितीया तिथि आज गमन कर रहे हैं।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, और आपका जो मंत्रोच्चार था इसने पूरे माहौल में आध्यात्मिकता और घोल दी है। हम आपको बताएं श्रोताओं कि इस समय 600 से अधिक स्वयं सेवक इस आयोजन में श्रद्धा पूर्वक तन्मयता से जुटे हुए हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 महीनों से रथ यात्रा महोत्सव की तैयारियाँ की जा रही थी। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस समय यहाँ चहुं ओर जय जगन्नाथ की गूंज है, और आकाशवाणी के माइक के माध्यम से आप सुन रहे होंगे, ये ध्वनि आप तक भी पहुंच रही है। महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध पूरी रथ यात्रा के पावन अवसर के साथ ही नई दिल्ली में भी इस रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शंख ध्वनि, ढोल, मंजीरे और भक्तों की जयकार आपको सुनाई दे रही होगी। भजन कीर्तन यहाँ ब्रह्म मुहूर्त से ही जारी है। हौज खास का ये मंदिर आज साक्षात पूरी धाम के श्री क्षेत्र सा प्रतीत हो रहा है। चहुं ओर आस्था का समुद्र उमड़ पड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ ये उल्लास रहा है। मंगला आरती, भोजन आरती और प्रभु लीला में अन्य तैयारियां की जाती रही हैं। रथ का वर्णन अगर हम आपको करें, यहाँ से हमारे कमेंट्री बूथ से हम रथ के दर्शन कर पा रहे हैं। रथ पर सुंदर नक्काशीदार लकड़ी के अश्व बनाए गए हैं, सारथी है। रथ के ऊपर लहराती ध्वजा, विशेष सज्जा सभी मनमोहक है। रथ स्वयं इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड के नायक अब अपने भक्तों के बीच आने वाले हैं। पूरी दुनिया में अनूठा आयोजन ये है अपनी तरह का, क्योंकि जब जब भी हमें प्रभु दर्शन करने होते हैं तो भक्तगण मंदिर में जाते हैं, लेकिन रथ

0: यात्रा एक ऐसा आयोजन है जब स्वयं प्रभु आते हैं अपने भक्तों के बीच उनसे मिलने के लिए, ऐसा भला कहाँ होता है। ये हमारी सनातन संस्कृति ही है कि इसमें भक्त और प्रभु सभी जो हैं वो एकाकार हो उठते हैं। दिव्य आभा लिए पतित पावन जगन्नाथ जी का रथ बेहद श्रद्धा और भक्तिभाव से तैयार किया गया है। सुरुचिपूर्ण सज्जा की गई है, साल की लकड़ी से इसका निर्माण किया गया है। लगभग 10 टन वजन है रथ का, 18.5 फुट ऊँचा, लगभग 15 फुट चौड़ा है और लगभग 22 फुट लंबा रथ है। अग्रभाग में सीढ़ियां हैं, इनके दोनों ओर दो दो अश्व बनाए गए हैं, दो काले अश्व हैं, दो श्वेत अश्व हैं, रंग बिरंगी लहराती पताकाएं हैं, ध्वजाएं हैं, उन पर प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। श्रद्धा पूर्वक ये पताकाएं स्वयं सेवकों ने और भक्तजनों ने हाथों में थामी है। रथ पर पीत वर्ण और गेरुए रंग की सज्जा की गई है, मोती माणिक्य गोटे और जगमगाते शीशों से पुष्प आकृतियां उकेरी गई है। द्वारपाल है, पुष्प सज्जा की गई है, गेंदे के पीले फूल हैं, श्वेत मोगरा है और अश्वों की जरी गोटे की काठी है। अग्रभाग में मजबूत रस्सियां बांधी गई हैं, ये छटा देखते ही बनती है श्रोताओं, इन पर भी सज्जा है। भक्त गणों का प्रयास रहता है कि किसी भी तरह वत्सल भक्त वत्सल प्रभु जो हैं उनके पावन रथ की रस्सी को बस छू भर ले, इसका अवसर प्राप्त हो जाए तो ऐसा लगता है कि हम धन्य हुए। रथ पथ को भी विशेष रूप से सजाया गया है, जगह जगह पर रंगोली बनाई गई है। NDMC, MCD, पुलिस प्रशासन, स्थानीय निकाय और दिल्ली सरकार ने आज के इस अनूठे महोत्सव के लिए अनुमति और सहयोग प्रदान किया है। नई दिल्ली के इस क्षेत्र में कुछ वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की गई है।
1: Yes, you're absolutely right, Neelam. And as we can see that the Patita Pavana Bana, the flag of Sri Jagannath is fluttering in front of us, and what a beautifully bedecked temple it is today. And you very vividly described the flower arrangements atop the rath on which Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be going on the yatra. And the significance of the yatra, as we know, is that on this day, on the Shukla Pashta Dwadashi day of Ashadha Mas, Lord Jagannath and his siblings Lord Balabhadra and Devi Subhadra travel to the Sri Gundicha Mandir, where Lord Jagannath was born, and it is said to be his maternal aunt's home, the Mausi ka ghar. And the Lord and his siblings go there for a week and they come back after 8 days. And this annual celestial yatra is one in which the Lord meets and mingles with all his devotees. And as we know that lakhs and lakhs of people come to the Sri Jagannath Mandir here at Hoskhas, and they think it is indeed a lucky omen for anyone who touches the ropes of the rath. And as Neelam mentioned, that we can see that there are four horses, two black and two white, and they are beautifully decorated, and the colors of the rath are yellow, red, and on top of it is the Patita Pavana Bana, the flag of Lord Jagannath. And as in Puri, when the Rath Yatra starts, the king of Puri, you know, he sweeps the road in front of the chariot with a golden broom, and even the king on the day of the holy Rath Yatra becomes a commoner. So that is the underlying message of the Rath Yatra, that there are no kings, there are no queens, all are commoners, and even the Lord becomes one of the devotees and partakes in the Rath Yatra with his devotees. And today, as we can see, that there are at least a couple of lakhs of people who are assembled here at this grand road, which is known as the Hoskhas Road, in front of the Sri Jagannath Mandir, and everyone is expectantly awaiting the arrival of Lord Sri Jagannath and his siblings from the Garbhagriha, and they will come here and then they will board this magnificent rath and go for the yatra from Hoskhas to Sri Aurobindo Marg.
0: जी कौशिक, और जैसा कि हमारे श्रोता भी जानते होंगे कि गर्भगृह में जब प्रभु के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो अपना स्थान प्रभु नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये अनूठा ऐसा आयोजन है जिसमें नगर भ्रमण करते

0: हैं हमारे प्रभु, और नगर भ्रमण करते वक्त भक्त जनों से मिलते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और उनकी कृपा दृष्टि जैसे ही भक्त जनों पर पड़ती है उल्लास माहौल में छा जाता है। हम आपको बताएं कि श्री नीलाचल सेवा संघ की ओर से आकाशवाणी को ये बताया गया कि 1979 से इस मंदिर की स्थापना के समय से ही यहाँ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा है। तब से लेकर आज तक दैव कृपा, भक्त जनों की श्रद्धा, स्वयं सेवकों की निष्ठा, श्री नीलाचल सेवा संघ की व्यवस्था और प्रशासन के सहयोग से निरंतर रथ यात्रा महोत्सव होता आया है। समय के साथ साथ ये और भी विशाल और भव्य होता गया है। लगभग 5,000 श्रद्धालुओं के साथ ये आरंभ हुआ था और आज लगभग 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु रथ यात्रा आयोजन में शामिल होते हैं। अलग अलग समय पर वो आकर प्रभु दर्शन करते हैं, अपनी ओर से सेवा करते हैं, जो सहयोग होता है वो करते हैं, और कई देशों के नागरिक भी प्रभु जगन्नाथ जी की इस लीला को निहारने यहाँ आते हैं। आज जब प्रभु स्वयं नगर भ्रमण करेंगे, संग बलभद्र जी होंगे और देवी सुभद्रा होंगी, तब भला कौन नैना भी रामम दृश्य को देखना नहीं चाहेगा। राजनीतिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां यहां दिखाई देती रही हैं, और हम आपको बताएं कि हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार यहां पर श्रीमती मृदुला प्रधान जी का आगमन हो चुका है और माननीय सांसद बांसुरी स्वराज जी भी यहां पर आ चुकी हैं। और जैसा कि एक परंपरा है वो निभाई जाती है कि राजाओं के राजा जगन्नाथ जी के सामने जो स्थानीय राजा होते हैं वो उनका रास्ता बुहारते हैं और अपनी ओर से सेवा भाव दर्शाते हैं। ये समर्पण का भाव है, साथ ही हमें इससे सीख भी मिलती है कि प्रभु के लिए उनके सारे भक्त समान होते हैं। तो यही रिचुअल यहाँ भी निभाया जाएगा, छेरा पहरा की विधि इसे कही जाती है। और हमें प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली के माननीय उप राज्यपाल जी सरदार तरनजीत सिंह संधू जी ये रीति निभाएंगे। झाड़ू से प्रभु के रथ के चबूतरे और सामने के पथ को बुहारा जाता है, और इससे हमें यही सीख कि भगवान के सामने कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है, हर काम का अपना एक महत्व है, और प्रभु सेवा में मिला प्रत्येक कार्य जब हम श्रद्धा से करते हैं तो यही हमारी भक्ति मानी जाती है और प्रभु इसे स्वीकार भी करते हैं। हम आपको बताएं कि वर्तमान समय में हमारी माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आ चुकी हैं। श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ आ चुके हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आए हैं। अलग अलग अवसरों पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ आए हैं। कला क्षेत्र से श्री जतिन दास, उनकी सुपुत्री नंदिता दास, प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मान सिंह तथा विविध क्षेत्रों की हस्तियाँ इस प्रतिष्ठित मंदिर में आती रही हैं, और आज भी यहाँ पर हम कलाकारों का एक जमघट देख पा रहे थे। रथ पथ जो है, रथ के अग्रभाग में उसमें घोड़ा नाच का आयोजन किया गया, लोक कला का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, कलाकार रथ के सामने झूमते हुए आगे बढ़े हैं और बस प्रतीक्षा में है कि कब प्रभु जगन्नाथ जो हैं वो गर्भगृह से यहाँ पर आएंगे, अपने रथ पर सवार होंगे, और कब भक्तगण जो है उनके रस्सी को खींचते हुए अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। हम आपको बताएं कि गर्भगृह से प्रभु विग्रह जब बाहर आते हैं उससे पहले रथ की भी अनुष्ठान पूजन किया जाता है, और अलग अलग विधियां हैं जिनका पालन किया जाता है। पूरी श्रद्धा के साथ तो किया ही जाता है, लेकिन बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन किया जाता है। मंदिर समिति के जो सदस्य हैं वो लगातार यहाँ पर सक्रिय हैं, अनुशासन का ध्यान रखा जा रहा है, और यहाँ से लगातार जो अनाउंसमेंट की जा रही है उसमें भक्त गणों से यही आग्रह किया जा रहा है कि वो अपना जोश तो बनाकर रखें, लेकिन साथ ही थोड़ी थोड़ी व्यवस्था भी बनाएं, क्योंकि जो विशिष्ट अतिथि गण हैं उनका आगमन शीघ्र यहाँ पर होने वाला है। जब हम यहाँ आ रहे थे हमारे कमेंट्री बूथ पर, तब हमने देखा कि पूरे मार्ग में यहाँ पर रंगोलियाँ सजाई गई थी, मार्ग में लंगर की व्यवस्था की गई है, मौसम को देखते हुए शिकंजी और शरबत की व्यवस्था की गई है, सुंदर मनमोहक रंगों की रंगोली बनाई गई है, और ये मनमोहक छटा जो है वो सहज ही मन को मोह लेती है। यहाँ पर जो स्वयं सेवक हैं वो सभी हमें पीले रंग की टी शर्ट्स में दिखाई दे रहे हैं, हाथ में पताका थामी हुई है, और बार बार जय जगन्नाथ,
1: जय जगन्नाथ इज व्हाट इज रिंगिंग इन द एयर एट द हॉर्सकास टेंपल। एंड एज वी मेंशन दैट द होली रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड श्री जगन्नाथ टेक्स प्लेस ऑन द आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, बट इट स्टार्ट्स अबाउट 15 डेज बैक विथ व्हाट इज नोन एज द स्नान यात्रा which takes place on the Devasnana Purnima, and this year it was held on the 29th of June, and after that there is the Anasara Niti, and then Netrotsava and Navajovana Darshan happens, and the Shri Rathayatra और श्री गुंडीचा यात्रा इज

0: भगवान जगन्नाथ की जन्मदिन है, वो जन्मदिन पर वो स्नान करते हैं और इतना ही स्नान करते हैं कि 108 कलश में भक्तों जनों ने भगवान श्री जगन्नाथ माँ सुभद्रा और बलभद्र देव को नहाते हैं। इसके प्रभाव में भगवान श्री जगन्नाथ और बलभद्र और माँ सुभद्रा को तबीयत खराब हो जाता है, ज्वर में प्रकंपित होते हैं। इसके बाद वो अनसर घर में चले जाते हैं, उनका सेवा शुश्रूषा किया जाता है। इसके बाद फिर जैसे बताया आपने बाहर आते हैं, और बाहर आते हैं तो उनको इच्छा होता है कि उनका जो जन्म स्थान है गुंडीचा वहाँ जाएं और उनका जो मासी माँ है श्री गुंडीचा वहाँ दर्शन करें। इसके लिए आज ये यात्रा को श्री गुंडी यात्रा बोला जाता है। और जैसे आपने बोले हैं जय जगन्नाथ ध्वनि पे पूरी समग्र एरिया यहाँ प्रकंपित है, ध्वनि चल रहा है, शंख चल रहा है, वाद्य चल रहा है, जैसे एक घोषणा हो रहा है और सभी जगन्नाथ की प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए ये यात्रा को भी घोष यात्रा माना जाता है।
1: जी, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूँगी कि इस रथ यात्रा से जुड़ी हुई एक रोचक कथा है। वैसे तो बहुत सारे लोग इससे परिचित हैं, लेकिन इस शुभ अवसर पर हम ये चाहेंगे कि हम आपसे वो कथा फिर से सुने। रथ यात्रा क्यों की जाती है, क्या वजह है?
0: रथ यात्रा जैसे आपने देख रहे हैं भक्तों के साथ मिलने के लिए भगवान बाहर निकल के आते हैं मंदिर से, और लाखों लाखों भक्त का यही इच्छा होता है कि वो भगवान के दर्शन करें। और ये एक संवाद देता है कि जगत नाथ जगतनाथ जगन्नाथ जिसके रूप में हम जानते हैं, वो ऐसे मैसेज देते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई जात पात नहीं है, यहाँ कोई उच्च नहीं है, यहाँ कोई नीच नहीं है, सभी समान है। समानता का वार्ता देता है ये जो रथ यात्रा श्रीगुंडीचा यात्रा और वसुधैव यात्रा। आपको ये पता ही होगा, हम जो देखें बहुत सारे हम वेद उपनिषद कठोपनिषद की बात करें, वहाँ भी हमको पता चलता है कि अयं निज परो वेति गणना लघु चेतसं उदार चरितानं तु वसुधैव कुटुंबकम्। पूरा परिवार आप देखें तो ये पूरा मानव समाज जो ग्लोब है वो एक परिवार है। तो यही संवाद आज की रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ लोगों को देते हैं। और इसका जो आप पौराणिक कहानी आप देखेंगे, पौराणिक कहानी यही है कि जब अनसर घर में बुखार होते हुए तीनों अंदर रह जाते हैं, बाहर आने के बाद मृदु मलय के साथ उपभोग करने के लिए और निजर माता को दर्शन करने के लिए, मौसी माँ को दर्शन करने के लिए वो यात्रा शुरुआत करते हैं। दूसरा लक्ष्य यही होता है जब जाएंगे लोगों के साथ मिलेंगे, ये हमारा गणतांत्रिक परंपरा है। भारतवर्ष में जो गणतंत्र है, पूरा विश्व में जो गणतंत्र है, आप जगन्नाथ संस्कृति देखें, ये गणतंत्र का एक प्रकृष्ट उदाहरण है। यहाँ राजा खुद प्रजा जैसे आज बिहेव करते हैं, इसका व्यवहार चलन प्रक्रिया ऐसे होते हैं कि सभी समान होते हैं। और भगवान श्री जगन्नाथ यही बोलते हैं कि सभी समान है, हम सभी मिलकर इकट्ठा काम करना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे जब रथ यात्रा शुरू होगा तब कैसे सभी एकाग्रता के साथ रथ को झुकेंगे, आगे बढ़ाएंगे। वो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारा भारत का संस्कृति है इसको दर्शाता है। इसलिए जगन्नाथ संस्कृति का सबसे पुराना संस्कृति माना जाता है। और जगन्नाथ संस्कृति में हम सोसाइटी में इक्विटी इक्वालिटी, इसके साथ डेमोक्रेसी और सभी जो भी गुण है डेमोक्रेसी का इसको देखने को मिलता है।
2: जी, एंड अभी वी कैन सी देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी नाउ, द व्हीकल ऑफ द वीवीआईपीज हैव स्टार्टेड अराइविंग हियर एंड द क्राउड्स आर very much waiting in anticipation for the Lieutenant Governor of Delhi to arrive, and then he will begin the ritual of cleansing the streets by using the broom. And now, Neelam, we can see that the motorcade of the Honorable Lieutenant Governor of Delhi, Shri Taranjit Singh Sandhu, is making its way towards the Shri Jagannath Temple, and he is accompanied by his security personnel, and the vehicle of the Honorable Lieutenant Governor of Delhi is now just passing our

0: commentary booth, and it is going towards the main entrance of the Sri Jagannath Temple, and the Honorable Lieutenant Governor of Delhi is now entering the temple gates, and the members of the temple committee are assembled here today, and they will be welcoming the Honorable Lieutenant Governor, and the vehicle of the Lieutenant Governor has come to a halt, and the committee members are now welcoming the Honorable Lieutenant Governor, and there's a huge surge of crowds here, and the 600 plus volunteers and the personnel of Delhi Police and the Central Security Forces are keeping law and order intact. And now we can see the Honorable Lieutenant Governor of Delhi has alighted from the vehicle, and he is being welcomed by the Temple Committee members, and soon he will go inside the Sri Jagannath Temple, and he will pay obeisance to Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra, and thereafter he will come here and he will perform the task of the king who sweeps the streets for the Lord's chariot to roll out grandly. And now we can see that the temple authorities garlanding the Honorable Lieutenant Governor as he is proceeding towards the Sanctum Sanctorum. And this is indeed a lovely sight here. In just about 10 minutes or so, the Moolvirat of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will come out of the Sanctum Sanctorum, that is the Garbhagriha, and it will be taken towards the Ratha, and it will be mounted on it, and then the Rathayatra, the famed Rathayatra, which is going on here at the Sri Jagannath Temple for the last 48 years, will start from here and go to Sri Aurobindo Marg before making its way back to the Sri Jagannath Temple.
1: जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है। छेरा पहरा की रीति वो निभाएंगे, यानी प्रभु जगन्नाथ के रथ के सामने वो एक तरह से बुहारेंगे, झाड़ू लगाएंगे, यानी प्रभु का जो मार्ग है उसे भक्ति भाव के साथ स्वच्छ किया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल जी का अभिनंदन किया गया, उन्हें लाल रंग का अंगवस्त्र पहनाकर और प्रभु जगन्नाथ के चरणों में कुछ वो अर्पित करने के लिए भी लेकर आए हैं, जो इस समय मंदिर में अंदर ले जाया जा रहा है, जो वो अर्पित करेंगे अपने श्रद्धा भाव से। कुछ सामान वो लेकर आए हैं प्रभु के लिए, और उनके आगमन को देखते हुए यहाँ पर जो अनुशासन व्यवस्था है वो बनाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है, और किसी तरह से बहुत ही मुश्किल से जो उनके वाहन है उनके लिए मार्ग बनाया गया, क्योंकि ये पूरा पथ जो है इस समय भक्तजनों से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, और भक्तगण हैं कि वो उत्साहित हैं, और माननीय उपराज्यपाल जी के आगमन के साथ ही उन्हें ये संकेत भी मिल चुका है कि कुछ ही पलों में प्रभु गर्भगृह से यहाँ पर बाहर आएंगे, उन्हें दर्शन देने के लिए अपने रथ पर सवार होंगे, और इस वजह से यहाँ पर उल्लास और दोगुना हो चुका है। दोनों हाथ हवा में उठाकर चहुओं और जय जगन्नाथ के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और अपने अपने एक प्रिय उपनाम से भक्त जो प्रभु को पुकारते हैं वो यहाँ पर बोला जा रहा है। जय गोविंदा कोई बोल रहा है, हरे कृष्णा कोई बोल रहा है, ढोल की, मंजीरे की, नगाड़ों की आवाज़ें आप तक पहुँच रही होंगी आकाशवाणी के माध्यम से। कलाकार यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं और अलग अलग लोक कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत उमस है माहौल में, गर्म है, धूप है यहाँ पर, लेकिन जो भक्तों का उत्साह है वो देखते ही बनता है, और आज भक्ति भाव के सामने जैसे कुछ भी नहीं टिक पा रहा है, और सूर्य नारायण जो हैं उनकी कृपा भी बनी हुई है। बीच बीच में हल्की सी हवा की बयार यहाँ पर आती है, लंबे लंबे डंडे हैं जिन पर पताकाएं बांधी गई हैं, पीले रंग की, लाल रंग की, उन पर अर्धचंद्र की आकृति बनी हुई है और अलग अलग प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, और कुछ लोक कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। हाथ में चक्र जैसा जो है वो चक्र घुमा कर यहाँ पर जैसे सुदर्शन चक्र को याद किया जा रहा हो कलाकार प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्य भक्त

0: गण हैं जो इसे निहार रहे हैं, सर पर हरे रंग की पगड़ियां बांधे हुए, गमछे बांधे हुए, पीले रंग की पोशाक पहने हुए, कमर बंद है नीले रंग का, धोती पहनी हुई है बॉर्डर वाली, और खास उड़ीसा की जो वेशभूषा होती है वो हमें यहाँ दिख रही है। उड़िया स्टाइल में यहाँ पर बहुत सारे लोग तैयार हुए हैं और अश्व के रूप में भी यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया गया, लोक कला का प्रदर्शन किया गया, घोड़ा नाच जिसे कहा जाता है। कुछ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें उनके माता पिता ने, उनके अभिभावकों ने कंधे पर इस समय उठा रखा है ताकि वो दर्शन कर पाएँ रथ का और भीड़ से भी थोड़ा बचाव हो पाए। और इस बहुत बड़ा जो ये जन समूह है, इसमें हम आपको कहेंगे कि सनातन संस्कृति का सौंदर्य हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस पूरी भीड़ में भी एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, माथे पर चंदन का, रोली का तिलक लगाए हुए, प्रभु को याद करते हुए जन समूह उल्लास कर रहा है, नृत्य मुद्रा में है। और कुछ ने यहाँ पर टोपी पहनी हुई है स्वयं सेवकों ने सफ़ेद रंग की, लेकिन वो उल्लास इस तरह का है कि बार बार जब नारे लगाते हैं तो एक तरह से अपनी टोपी भी उतार लेते हैं ताकि प्रभु का आशीर्वाद जो है सीधे उन्हें ग्रहण किया जा सके उनके द्वारा। और यहाँ पर अलग अलग कलाओं का प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर एकदम चमकदार श्वेत रंग में और भी भव्य और भी दिव्य आज प्रतीत हो रहा है, और सुदर्शन चक्र जो है वो मंदिर के चोटी पर हम देख रहे हैं इस समय पूरे शान के साथ दमकता हुआ, और सूर्य किरणें जो हैं ये रश्मियाँ सुदर्शन चक्र का जैसे आलिंगन करती हुई प्रतीत हो रही है।
1: Yes, you are absolutely right, Neelam, and the Sudarshan Chakra which you mentioned is a very important part of the Ratha Yatra. In fact, Sudarshan is the one who provides a security to the Lord and his siblings during this ethereal Rath Yatra. And we would like to know from you, Dr. Mohapatra, about the importance of Sudarshana in the Rath Yatra process.
2: धन्यवाद कौशिक जी। मैं इसके साथ थोड़ा इसको पूरा पर संगति के साथ बोलना चाहूँगा कि आज का जो रथ यात्रा है इसको भी दशावतार यात्रा बोला जाता है, और इसमें आप स्कंद पुराण में श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में विस्तृत रूप में आलोचना की गई है। इसमें लिखा है रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात रथ के ऊपर जब हम वामन रूपी श्री जगन्नाथ को दर्शन करते हैं तब किसी का पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसे आपको पता है हिंदी संस्कृत में हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और भगवान विष्णु ने दशावतार लिए हैं, और ये दशावतार की एक अवतार होता है वामन अवतार। आज रथ के ऊपर भगवान श्री जगन्नाथ वामन अवतार के रूप में विद्यमान होंगे और सभी भक्तों को दर्शन देंगे, और यही इसका लक्ष्य यही है कि एक मैसेज भगवान श्री जगन्नाथ देते हैं कि हम जो सुदर्शन चक्र के भी बात कर रहे थे, जैसे आप बोल रहे थे सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के श्री जगन्नाथ की एक अस्त्र होता है जो शक्ति का प्रतीक होता है। हम जानते हैं जब संसार में कोई पाप का असर बढ़ जाता है तब एक अवतार लेते हुए भगवान दर्शन देते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो भगवान श्री जगन्नाथ अभी कलियुग में जो अवतार में है, जगन्नाथ के अवतार में है, वो अभी लोगों को प्रेम के संदेश देते हुए प्रेम के द्वारा समाज में शांति और प्रगति के रास्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपसे और एक बहुत विशेष चीज़ हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए जानना चाहेंगे, वो ये है कि जो मूल विराट होता है, जो कि गर्भगृह में जो भगवान की जो मूल विराट प्रतिमा होती है, वो गर्भगृह से बाहर कभी नहीं निकलती है, लेकिन ये श्री जगन्नाथ

0: जी की रथ यात्रा में कोई उत्सव मूर्ति नहीं आता है रथ में, मूल विराट यानी स्वयं प्रभु, प्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा, वो तीनों प्रतिमाएं अपने गर्भगृह से निकलकर अपने रथ पर विराजमान होकर के श्री गुंडीचा जाते हैं। ये इसकी क्या प्रमुखता है?
1: आप कौशिक जी जैसे जिक्र किया है, भगवान श्री जगन्नाथ को भी दारू ब्रह्म बोला जाता है। दारू का अर्थ होता है लकड़ी, ब्रह्म की रक्ष होता है परमात्मा। जब रथ यात्रा के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ दारू ब्रह्म के रूप में बाहर निकलते हैं, तब लोगों के साथ मिलते हैं, ये एक प्रतीक है कि आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन होता है। लाखों आत्मा भक्तों के रूप में आज जो हसखस मंदिर के पास उपस्थित है, वो सभी परमात्मा से मिलने के लिए उत्सुक है और एक अवसर है। जिस दिन ये श्रीगुंडीचा यात्रा, घोष यात्रा या दशावतार यात्रा संभव होता है, सालों में एक बार पूर्ण विग्रह बाहर आते हुए सुदर्शन के साथ आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने के लिए एक प्रयास होता है और एक एक उदाहरण होता है। जैसे कि भक्तिभाव से, कर्मयोग से लोग अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिला सकते हैं।
0: And in a very short while from now, the Honorable Lieutenant Governor of Delhi will be coming out of the Sri Jagannath Temple complex, and Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will board the grandly decorated Rath, and they will be going on this Rath Yatra from the Horse Khas Road towards Sri Aurobindo Marg. And we can easily see that the crowds are just swelling up here. There is not even an inch of place right before our commentary booth, and the enthusiasm of the people is just amazing here. It is such a hot and humid day, but the fervor, the devotion, the affection and the love for Lord Jagannath is what makes the Sanatana spirituality come up to its zenith. And we can see that the Rath, which is so grandly decorated, every person here, man or woman, young or old, grandchild or grandparent, everyone wants to just pull the ropes of the grand chariot.
2: जी बिल्कुल, और जो और भी छोटे बच्चे हैं जो गोद में हैं, माताओं का ये प्रयास इस अवसर पर रहता है कि उनका भी हाथ किसी तरह प्रभु जगन्नाथ के दिव्य रथ की रस्सी को बस छू भर जाए, और ये प्रभु का आशीर्वाद होगा बहुत बड़ा उन बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो भक्तगण हमें दिखाई दे रहे हैं, उनका उल्लास, उनका भाव कुछ इस प्रकार का है कि दुनिया के झूठे बंधनों से मुख मोड़ आया हूँ, मैं अपनी कश्ती को तेरे तट छोड़ आया हूँ, रख लो शरण में प्रभु अब और न तड़पाओ, मैं तो बस तुमसे ही दिल का रिश्ता जोड़ आया हूँ। अपने आप को ही जैसे समर्पित कर रहे हो ये भक्तगण प्रभु जगन्नाथ को। और ये सनातन संस्कृति जो है, इसका सौंदर्य ये है कि हम अपने भगवान को भी अपने जैसा ही मानते हैं, उनसे हम एक रिश्ता जोड़ते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो बहुत सारे लोक कलाकार हैं, वो प्रभु के रथ के सामने ही अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में और परिश्रम करें और आगे बढ़ जाएं, उन्हें और यश प्राप्त हो, उन्हें और कीर्ति प्राप्त हो। और इस यश की, कीर्ति की कामना जो है प्रभु से करते हुए ये कलाकार, थोड़ी थोड़ी जगह इन्हें प्राप्त हो रही है इस भीड़ में, लेकिन उसमें भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं नृत्य चल रहा है तो कहीं अखाड़े हैं, और कहीं जो है वो हम कहते हैं द्वंद्व कला, उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और हम बताएं कि हम कहते हैं अपने भगवान से हम रिश्ता जोड़ते हैं, हमारे भगवान हमारे ही जैसे हैं, तो प्रभु जगन्नाथ ऐसे हैं। उनकी लीला इस प्रकार की है कि वो बीमार भी होते हैं, वो फिर काढ़ा पीते हैं, वो क्वारंटीन में रहते हैं, यानी कुछ दिन वो बिल्कुल अलग रहते हैं ताकि उनके सानिध्य से वो बीमारी किसी और को ना लगे, और उसके बाद स्वस्थ होकर फिर से एक भव्य स्नान की प्रक्रिया की जाती है, और फिर से वो भक्तजनों को दर्शन दे।

0: देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि देवी सुभद्रा ने एक बार नगर भ्रमण की इच्छा जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपने नगर को देखना चाहती हूँ, और उसके बाद बलभद्र जी बड़े भाई और फिर जगन्नाथ जी स्वयं अपनी बहन को स्नेह पूर्वक लेकर नगर भ्रमण भी करवाया और फिर अपने मौसी के घर गए। तो हमारे भगवान भी हमें ये संदेश देते हैं अपनी विभिन्न लीलाओं के माध्यम से कि हमारे लिए हर रिश्ते का एक महत्व है, हमारे लिए आपस में परस्पर प्रेम और सद्भाव जो है उसका महत्व है, और जो वृद्ध जन है हमारे जीवन में उनके प्रति सम्मान भी रहे, लेकिन जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति हमारा स्नेह भी बना रहे। इस तरह से हमें लोकाचार की सीख हमारे प्रभु अपनी लीला के माध्यम से देते हैं। और हम यहाँ पर इस समय देख रहे हैं जो स्वयं सेवक है उनके लिए ये थोड़ा सा कठिन समय है, क्योंकि उन्हें यहाँ अनुशासन लगातार बनाए रखना पड़ रहा है। भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार उमड़ रही है और किसी तरह वो बस नज़दीक पहुंचना चाहते हैं रथ के। और यहाँ जो इस समय घंट ध्वनि है, यहाँ पर जो शंख ध्वनि है और कंठ ध्वनि है जय जगन्नाथ की, उससे हमें ये आभास हो रहा है कि शायद मंदिर के अंदर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि अब गर्भगृह से कुछ ही समय में प्रभु विग्रह, तीनों ठाकुर जी के विग्रह जो हैं वो बाहर लाए जाएंगे और पूरी तरह झूमते हुए जो ये लोकाचार करते हैं, ये जो पद्धति करते हैं और कर्मकांड की जो पद्धति करते हैं वो भी पूरी तरह से हमारे जो पंडे होते हैं, जो पुजारी जी होते हैं, वो समर्पित हैं ठाकुर जी को और उसका पूरी तरह से पालन करते हुए, विधि विधान का पालन करते हुए, रीति का पालन करते हुए वो विग्रह को लेकर आते हैं साग्रह, उनसे अनुरोध करते हैं प्रभु से कि आइए प्रभु अब अपने रथ पर आरूढ़ होइए। और रथारूढ़ होते ही प्रभु का दर्शन यहाँ भक्त जनों को मिलेगा। जो मंदिर के बाहर इस समय पंक्तिबद्ध तरीके से कुछ समय पहले तक थे, लेकिन अब वो पंक्तियाँ कहाँ गई पता नहीं, भीड़ में जिसे जो स्थान मिल रहा है वो बस रथ की एक झलक देखना चाहता है। मंत्रोच्चारण यहाँ पर शुरू हो चुका है और इस बीच हम ये आभास पा रहे हैं कि कुछ ही समय में विग्रह जो हैं वो गर्भगृह से बाहर आएंगे, मंदिर से बाहर आएंगे, और इस तरह से भक्त वत्सल प्रभु भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देंगे और एक तरह से हम मान सकते हैं कि स्वयं अपने भक्तों को देखेंगे। और जगन्नाथ जी के जो नयन हैं, उनके विशाल काले नयन अपलक भक्तों को निहारते हुए वो मंत्र मुग्ध कर देते हैं हर किसी को। जब वो देखता है कि कोई भी भक्त ये देखता है कि प्रभु उसी को देख रहे हैं, तब तो भाव विभोर हो उठते हैं भक्तगण। और यहाँ पर कुछ आतिशबाजी की जा रही है रथ के सामने और ये शंख ध्वनि, मंत्रों की ध्वनि आप तक पहुँच रही आकाशवाणी के माध्यम से।
1: And now Neelam, we can see that the Honorable Lieutenant Governor of Delhi, Shri Taranjit Singh Sandhu, and we can now see also the Mool Virats are just emerging out of the temple complex, and this is indeed a sight to see. All the rituals are being followed as per the traditions of Lord Jagannath, and we can see the beautifully decorated umbrellas under which the gods, the Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be escorted to the Ratha. And what a beautiful sight it is indeed. And Dr. Mahapatra, we would like to know from you about the importance of this traditional welcome for the lords from the Garbhagriha to the Ratha.
2: Dhanyabad Kaushik ji, jaise aap abhi dekh rahe hain, Bhagwan Shri Jagannath, Balabhadra Dev और माँ सुभद्रा की कोहंडी विजय चल रहा है। इसको कोहंडी विजय बोला जाता है। जब गर्भगृह से तीनों को लिया जाता है और भक्तगण इसको पकड़ के आलिंगन करके छू के उनको लेकर आते हैं, और जब आते हैं तब शंख ध्वनि होता है, मृदंग होता है, वाद्य होता है, लोगों का जय जय गान होता है, और ऐसे लगता है कि घोष चल रहा है, घोष यात्रा चल रहा है। और इससे पहले जैसे आपने बताया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल है दिल्ली का, वो छेरा पहरा कार्यक्रम हाथ को लिए हैं।

0: फेरा पहरा इसको बोला जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र और माँ सुभद्रा जब यात्रा में निकलते हैं वो रास्ता को स्वीपिंग झाड़ू लगाना जरूरत होता है, सफाई करना जरूरत होता है। वो सफाई पवित्र जल में सिंचने के बाद एक झाड़ू द्वारा किया जाता है। आज ये एक सौभाग्य होता है जो ये झाड़ू का कार्यक्रम अपनाता है, क्योंकि झाड़ू लगाना एक ऐसे सूचना है कि आपका सभी गर्व, सभी अहंकार, सभी जितना आपका सभी नेगेटिव से इसको आप जलांजलि देते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ यही बोलते हैं, जो भी आपका यात्रा है या लोगों का यात्रा हो कि जीवन का यात्रा हो, आप सभी आपका सभी नेगेटिव्स को निकाल दीजिए और पॉजिटिव्स को अपनाएं। अभी जैसे आप देख रहे हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर आगे सेरा पहरा कार्य संपादन कर रहे हैं और पीछे सुदर्शन माँ सुभद्रा बलभद्र देव और श्री जगन्नाथ को पहंडी करते हुए जागे जागे रुकते हुए डोली में नचाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात आप देख पाएंगे कि उनके पास जो मुकुट लगा होता है वो बहुत सुंदर होता है, बहु फूलों से ये सुशोभित होते हैं, बहुत रोमांचक होते हैं।
1: एंड नाउ द लॉर्ड हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द गर्भगृह एंड ही इज बीन लेड इन द पहंडी फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द श्री जगन्नाथ टेंपल टुवर्ड्स द beautifully decorated rath, and what a beautiful sight it is to behold. Neelam, this is just unbelievable, indescribable, the beauty of it, the sublime beauty, the devotion and the love for Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra, of all the devotees who are present here today. Today is the day when the Lord comes and meets his common devotees as a friend and as a family member.
2: Ji bilkul, aur is samay prabhu ke darshan jaise hi hue hain, garbhagrih se mandir prangan se prabhu bahar aaye hain, to bhaktun ka jo josh hai wo dekhte hi banta hai, jhoomte hue prabhu jo hain wo apne rath ki or ja rahe hain, aur yahan par is samay भक्त गण जो हैं वो भाव विह्वल हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, आनंदित हैं, मग्न हैं, कुछ भक्ति भाव में नृत्य कर रहे हैं तो कुछ जय जगन्नाथ के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं, प्रभु के दर्शन पाने को उत्सुक हैं। और यहाँ पर व्यवस्था जो है वो इस समय है कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ रथ की ओर मुंह करके खड़ा है और दर्शन पाना चाहता है प्रभु के। प्रभु भी आनंदित होकर भक्तों के बीच पहुँच कर ऐसा लगता है कि झूमते हुए अपने रथ पर सवार होंगे और फिर शीघ्र ही वो दर्शन देंगे, रथ से अपने सभी भक्तों को निहारेंगे अपने बड़े बड़े गोल चकानैन से। और यहाँ पर हम बताएं कि भक्तगण जो हैं वो बिल्कुल सम्मोहित से प्रतीत हो रहे हैं। देवी सुभद्रा साक्षात ममता और करुणा की मूर्ति, तुलसी दल की मालाएं यहाँ दिखाई पड़ रही हैं हमें, ताजे मोगरे हैं, गेंदे के पुष्पों का श्रृंगार है, अद्भुत छठा है यहाँ प्रभु की देखते ही बनती है। और यहाँ पर जो है वो स्वर्ण और रजत जो है सोने और चांदी के आभूषणों से प्रभु का श्रृंगार किया गया है, मस्तक पर चंदन का तिलक है, भक्तों को सम्मोहित करता हुआ रत्न जड़ित किरीट है प्रभु का मुकुट जो है। और जैसे एक राजा की सवारी निकलती है और साथ साथ हाथों में उनकी शान में थामे हुए ध्वज होते हैं, पताकाएँ होती हैं और सुसज्जित जो है प्रतीक चिन्ह होते हैं, उसी प्रकार से प्रभु जगन्नाथ जो हैं, जगत के नाथ, वो गर्भगृह से बाहर आए हैं और अब अपने रथ की ओर बढ़ रहे हैं, रथ पर सवार होंगे और उसके बाद रथ यात्रा यहाँ से आरंभ होगी। भोर भय आज जो है वो यहाँ का पूरा माहौल जो है वो बदल गया था, भक्ति भाव हर समय महसूस किया जाता रहा यहाँ पर। और कहा जाता है कि जी चाहता है अमीर हो जाऊँ, मैं तेरे दर का फकीर हो जाऊं। प्रभु के दरबार में सेवा का अवसर अगर किसी को मिल जाए, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, वो जगह को बुहारना हो, रथ की सेवा हो, पुष्प सज्जा हो या अन्य सेवा हो, प्रभु के दरबार में अगर वो सेवा मिल जाए तो अपने आप में ऐसा लगता है कि हमने दुनिया भर की दौलत जो है वो पा ली है। यही भाव यहाँ पर हर समय हम महसूस कर रहे हैं, भक्तजनों में दिखाई दे रहा है। और हम आपको बताएं कि ये उल्लास जो है हमारे कॉमेंट्री बूथ तक है। इस समय हमारे कमेंट्री बूथ में जितने भी व्यक्ति हैं श्रद्धा भाव से भरे हुए हैं, अपने अपने स्थान से प्रभु को नमन कर रहे हैं। और हम बताएं कि हमारी आज की ये जो कमेंट्री है ये भी हम सेवा भाव में प्रभु के दिए हुए काम को मानकर अर्पित करते हैं प्रभु जगन्नाथ जी को ही।
1: बिल्कुल नीलम, एंड नाउ एवरी आई इज क्रेनिंग towards the Rath of Sri Jagannath, where the Lords and Devi Subhadra will board this magnificent Rath. And as you mentioned earlier, that it was the desire of Devi Subhadra to go on a visit of the city of Puri. And now we can see that enthusiastic clapping by the people, the devotees who have come here to behold the Lord, and they are chanting Jai Jagannath and clapping. And as you also mentioned, Neelam, that the preparations for today's Sri Jagannath Yatra started from the Brahma Muhurta. Actually, the Brahma Muhurta starts 1 hour 36 minutes before dawn, and since then the rituals have been going on, and every eye is towards the Rath now, where Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will board this royal chariot, and then they will go on the Yatra from Sri Jagannath Mandir Horse Cars towards Sri Aurobindo Marg. And this is a very laid down route. It will travel from the starting point of the Sri Jagannath Mandir at Horse Cars, then go towards Bhagawan Jagannath Marg, and then exit from the Sri Aurobindo Place Market towards Yusuf Sarai Market, and just before the bus stop of Safdarjung Hospital, it will take a turn towards the right and once again go towards the Yusuf Sarai Market, then Horse Cars, and then from Daleep Singh Marg it will take a right turn, and then it will come ahead towards the Aurobindo Place Market and take a left turn and enter Bhagawan Jagannath Marg, and then the Rath Yatra will conclude here at the Sri Jagannath Temple at Horse Cars. And this is a very elaborately laid out route of the Yatra, which is taking place for the 48th time since it started in 1979. And this Rath Yatra is organized under the auspices of Sri Neelachal Seva Sangh, and they have been doing yeoman service for the devotees and for the people of Delhi. And this Rath Yatra is just an amazing festival where every person comes as a devotee and an ardent fan of Lord Jagannath. And now we can see that the Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra are boarding the grandly decorated Rath. And in the Rath are the members of Sri Neelachal Seva Sangha, the organizers of this grand Rath Yatra celebrations.
2: जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप जो है विज्ञान जगत की जानी मानी हस्ती हैं, प्रतिष्ठित हस्तियाँ विज्ञान जगत की हैं, लेकिन इस समय एक आध्यात्मिक अनुष्ठान से आप जुड़े हैं, और जो हमारी जानकारी है बहुत लंबे समय से आप अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि विज्ञान और आध्यात्म दो विपरीत जो है वो धाराएँ हैं, आप इस विषय में क्या कहेंगे, आपका अनुभव क्या है?
3: धन्यवाद आपको, आपने कुछ हद तक सही बताया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दोनों अलग मार्ग होता है, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये दोनों अलग नहीं है। विज्ञान के साथ हमारा जो परंपरा, हमारा जो संस्कृति जुड़े हुए हैं, और जब हम जगन्नाथ संस्कृति बात करते हैं वो एक सामाजिक प्रगति का रूपरेख है। जैसे आपको पता है आज का जो रथ यात्रा है, इसमें दुनिया में बहुत सी ताकत है जो लोगों को बांटते हैं, भाषा, धर्म सीमाएं पहचान, लेकिन उड़ीसा का ये पवित्र नगरी जो दिल्ली, भारत की पवित्र नगरी दिल्ली में खसखस में ये जो जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रहा है, ये सभी लोगों को जोड़ता रहता है, दुनिया को जोड़ता रहता है। मैं आज तक देखा

0: कोई भी धर्म की लोग भी है, सालों भर करोड़ों आंखों बस इस पल का इंतजार करते हैं जब भगवान से जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा बहन के साथ मंदिर से सीमाओं को छोड़कर अपने भक्तों को बीच आए और ये प्रमाण करें कि ऐसे कोई निपार्थक्य नहीं है। इन्हों हाथों में कोई राजा और कोई मजदूर, कोई डॉक्टर, कोई किसान, कोई पहली बार आया या कोई हर बार आ रहे हैं
1: जी,
0: लेकिन इन हाथों को जोड़ता है ये जो रथ यात्रा। ये रथ यात्रा दिन बहुत सारे भक्तों का एक आवेग होता है कि नारियल चढ़ाए, अपना समर्पण भक्तों को, भक्तों का समर्पण श्री जगन्नाथ पास दिखाए। ये जो यात्रा है ये कर्मयोग का यात्रा है, इसमें ये प्रेरणा मिलता है जो भगवान को आप देखें, उनका जो चेहरा को आप देखें, आप देखेंगे उनके बड़ी बड़ी गोल आँखों होते हैं, वो गोल आँखों का आप तुलना करें, कोई मानव का आँखों के साथ इसका तुलना नहीं है। गोल आँखों ये दर्शाता है कि मेरे सामने जो भी खड़े हैं वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो बच्चे हो, बूढ़े हो, वो पुरुष हो, महिला हो, वो सभी समान है मेरे लिए, मेरे करुणा सभी के लिए समान है, वो कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है। और इसके साथ साथ भगवान श्री जगन्नाथ का जो रंग है वो काला है, वो बोलते हैं कि जो काला रंग है ये सभी दलितों का प्रतीक है, जो सभी पुअर एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन है उन सभी का प्रतीक है। और इसके साथ साथ जो बड़े भाई हैं वो सफ़ेद रंग का है और उनका जो बहन है वो पीला कलर का है, और पूरा दुनिया में जितना लोग हैं समाज की आप देखेंगे कि तीनों कलर का होते हैं, इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ
2: लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र एंड देवी सुभद्रा, दे आर बोर्डिंग द रथ एंड व्हाट अ साइट इट इज इंडीड। नीलम एंड डॉक्टर महापात्र, वी आर इंडीड witnessing something which is absolutely stunning and which is so full of devotion, and indeed as we are also our devotees, this is something which only we can catch the sight of, and we do not have the adequate words to express this feeling. This is just a moment in time, an ethereal moment in time, where the Lord of the universe, Lord Balabhadra and Devi Subhadra, have boarded the rath, and now it will be pulled by the thousands and thousands of devotees who have assembled here. And soon the Rath Yatra of the Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will start.
1: जी, और इस अद्भुत मनोरम दृश्य के लिए ऐसा लगता है कि शब्द कम पड़ गए हैं, इसका वर्णन हम किन शब्दों में करें। आपको बताएं कि तीनों ठाकुर इस समय अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं अपने दिव्य रथ पर, और ये आभा जो है ये अद्भुत है। यहाँ मार्ग में विशाल स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि जो भक्तगण हैं, जो दूर दूर से इस दृश्य को निहारना चाहते हैं, वो स्क्रीन के माध्यम से दर्शन पा सकें प्रभु का और दिव्य रथ का। रथ पर तीनों ठाकुर हैं और उनकी सेवा में जो यहाँ पर श्री नीलाचल सेवा संघ है, वो ये समिति जो है इसके विशिष्ट सदस्य हैं, इसके सचिव रविंद्रनाथ प्रधान जो हैं रथ पर प्रभु सेवा में हैं, और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू इस समय रथ पर हैं और सभी प्रभु सेवा में और रीति के साथ में, विधि विधान के साथ में अभी सब किया जा रहा है।
2: Is doing namaskar and waving to the crowds, and soon he will be deboarding from the rath, and he will also be pulling the rath as a sevadar, and what a feeling it is indeed.
1: जी बिल्कुल, और समिति के जो सेवादार हैं, मंदिर के जो सेवादार हैं, रह रह कर वो भक्त जनों के साथ संवाद भी स्थापित कर रहे हैं, और भक्तगण हैं जो दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाकर जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर अद्भुत दृश्य ये इस समय है, ये पूरा पथ जो हम दूर दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती है वो भक्त जनों से भरा हुआ है, और हैरानी होती है कि इनके बीच से कैसे रथ आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही रथ की रस्सी खींची जाएगी, प्रभु को ले जाया जाएगा भक्त जनों के बीच में, ऐसा लगता है कि प्रभु स्वयं जो है वो प्रेम भाव से सबको दर्शन देते हुए मार्ग बनाएंगे।

0: और अपनी दिव्य लीला से वो इस पूरे पथ से आगे बढ़ते हुए जाएंगे।
1: That is why we all know in Sanatan there is something called प्रभु इच्छा।
0: जी बिल्कुल, प्रभु इच्छा, और ये तो भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव इनके मन में है, इसीलिए स्वयं वो आते हैं भक्तों के बीच में। और ये सनातन संस्कृति जो है ये हमें सिखाती है अपने जैसे ही अपने प्रभु को मानना और अपने प्रभु से ही अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन मांगना ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके। और डॉक्टर मृत्युंजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है और हमें पता चला है कि हर साल ये और भव्य होती जा रही है, तो इस समय आप यहाँ पर क्या अंतर पा रही हैं जो पहले रथ यात्रा हुई है और जो इस बार हो रही है?
2: आज जैसे आप देख रहे होंगे आसमान थोड़ी से बादल में घिरा हुआ है, तापमान ज्यादा नहीं है, इसीलिए बहुत संख्या में भक्तों का यहाँ उपस्थित है। और जैसे ही हम सालों से दूसरे सत्र में जाते हैं भक्तों की संख्या बढ़ रहा है। और मैं आपको इस रथों के बारे में बोलना चाहता हूँ, दार्शनिक तत्व तो देखें जगन्नाथ संस्कृति का, रथ एक शरीर है और रथारूढ़ जब हो जाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और माँ सुभद्रा, तब आत्मा का परमात्मा का प्रवेश होता है। वो ये संदेश देता है जब आप रथ को खींचते हैं, जब रथ यात्रा होता है, ये शरीर का यात्रा है, वो शरीर को यात्रा को कैसे आप सफल बनाएंगे, कैसे आप एकाग्र होकर, कैसे आप अपना सभी शक्ति को प्रयोग करके सुर मार्ग में यात्रा करेंगे। जैसे कि अभी भगवान श्री जगन्नाथ, देव बलभद्र और माँ सुभद्रा रथ यात्रा में जाएंगे, और शरीर रथ है और भगवान आत्मा है, और अभी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है रथ यात्रा में। तो इसलिए रथ यात्रा एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू है, इसका दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं कुछ भी टाइम पर। और आज जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारे उपराज्यपाल दिल्ली के रथारूढ़ भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करते हुए अभी सभी लोगों को प्रणाम जना कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं सभी का हृदय में भगवान श्री जगन्नाथ उपस्थित है।
1: Dr. Mahapatra, we can also see that on board the Rath is the Honorable Member of Parliament, Bansuri Swaraj, who is there with the Honorable Lieutenant Governor of Delhi. And we'd also like to know from you that the Rath Yatra is also a very social festival, because here the three siblings, Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra, they travel to their maternal aunt's home, the Mausi's ghar. So can you explain to us the social aspect of this beautiful festival? And now the Rath Yatra has started. We can see that the Rath is slowly moving, and in a few moments the magnificent Rath will पास थ्रू आर कॉमेंट्री बुक।
2: जैसे कौशिक जी आप बोल रहे थे, रथ यात्रा बहुत सारे सामाजिक संस्था का प्रतीक है, सामाजिक परंपरा की प्रतीक है। जैसे पहले बताया आप, ये भाई और बहन का यात्रा है, ये दर्शाता है कि आज जैसे हम यूनिटरी फैमिली देख रहे हैं, यौथ परिवार का संख्या कम हो रहा है, भगवान जगन्नाथ ये संवाद दे रहे हैं कि हमारे लिए यौथ परिवार बहुत अनिवार्य है, और भाई और बहन का रिश्ता जब तक रथ यात्रा शुरू हुआ है तब से है। दूसरा बात यह है, जब भगवान श्री जगन्नाथ जाते हैं, समाज का हर श्रेणी के साथ, हर वर्ग के साथ, हर जाति के साथ जुड़ते हैं, और ये श्रेणी बहन समाज का एक प्रतीक है। मैं आपको और की बात बताऊं, भगवान श्री जगन्नाथ का सबसे बड़े भक्त है भक्त सालवेग, जिसके लिए एक बार रथ यात्रा के दौरान रथ पुरी के बड़दान में रुक गया था जब तक सालवेग नहीं आए थे।
0: जी,
2: आप जितना अच्छा अच्छा भजन देखेंगे भगवान श्री जगन्नाथ का, इससे सबसे अच्छा भजन सालवेग ने लिखे हैं, और उनका जो भजन है हम भी स्कूल में पढ़े हैं, आहे नीड़ सोईड़ प्रबड़ मत बरण मुआरत नलीनी बो नकु कर दड़न। एक रिलीजियस हारमोनिटी दिखाता है वो नीला शैल, तो दूसरा नाम है श्रीनाथ की दारू ब्रह्म की जो नीला शैल के ऊपर उपस्थित है पूरी में, उनको सबसे बड़ा प्रार्थना कोई एक गाय है वो भक्त सालवेग है, और जो हम स्कूल में जब पढ़ रहे थे वो हमारा पहला प्रार्थना था और ये सामाजिक परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है
0: जी। और हम यहाँ इस समय देख पा रहे हैं कि रथ पर माननीय उपराज्यपाल जी हैं, बांसुरी स्वराज जी हैं माननीय सांसद, और कुछ समय पहले ही भक्तजनों से कुछ आत्मीय संवाद उन्होंने किया है, अपनी श्रद्धा यहाँ पर उन्होंने प्रभु जगन्नाथ के प्रति दिखाई है, और सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से जय जगन्नाथ के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। डॉक्टर मृत्युंजय, मैं आपसे यहाँ ये भी जानना चाहूँगी, जब हम रथ यात्रा का उल्लेख कहीं भी सुनते हैं तो बहुटा यात्रा के बारे में भी हम सुनते हैं कि एक वापसी की यात्रा भी होती है, मौसी घर से वापस आती है, मैं चाहूँगी कि इस बारे में भी आप जरूर बताएं।
2: जी, रथ यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में शुरू होता है और ये 10 दिन का यात्रा होता है, और ये जाते जाते जब महालक्ष्मी को पता चलता है कि ये भाई और बहन गर्भगृह छोड़ के चले गए हैं, वहाँ महालक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं
0: जी।
2: और वो जाकर हेरा पंचमी के दिन पंचमी तिथि में बड़ोदंड में रथ को देखकर तोड़ देते हैं रथ को
0: जी।
2: सो फिर बाद में जगन्नाथ पता चल जाते हैं कि महालक्ष्मी अभी रुक गए हैं
0: हाँ।
2: और इसके बाद वो जाकर जब रहते हैं अपना मासीमा मंदिर में श्रीगुंडीचा मंदिर में, फिर दशमी तिथि में बहुड़ा दशमी इसको बोला जाता है, जो कि रिट्रीट होता है, रिटर्न जर्नी होता है, और रिटर्न जर्नी जब आते हैं फिर डिफरेंट स्टेप्स में बहुत कार्यक्रम होता है, इसके बाद फाइनली सुनावेश होता है, और फिर मंदिर में जो प्रवेश करते हैं महालक्ष्मी उनको अलाउ नहीं करते हैं मंदिर जाने के लिए, वो बोलते हैं कि नहीं मैं द्वार नहीं खोलूंगा क्योंकि आपने मुझे नहीं लिया साथ में, आप बहन के साथ गए, भाई के साथ गए, मुझे आपने कंसिडर नहीं किया। फिर भगवान जगन्नाथ उनको संतुष्ट करने के लिए रसगुल्ला लेकर जाते हैं, रसगुल्ला भोग होता है, और वहाँ भगवान श्री जगन्नाथ जैसे हम पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ महालक्ष्मी को संतुष्ट करते हैं और फिर मंदिर को विजय करते हैं, वो बहुड़ा यात्रा होता है। ये एक दिखाता है कि संसार में स्वामी का जितना ही अधिकार है, पति का जितना ही अधिकार है, पत्नी के भी उतना ही अधिकार है, और पूरी परिवार को सदस्य को साथ मिलकर चलना है
0: जी। तो प्रभु जो है वो अपनी लीला के माध्यम से प्रत्येक संबंध जो हमारे जीवन में है उसका महत्व हमें दर्शाते हैं, और हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे भगवान हमारे ही जैसे, भगवान के घर में भी झगड़ा होता है, वहाँ भी रूठते हैं, वहाँ भी मनाया जाता है धर्म पत्नी को, और जैसा कि आपने कहा कि फिर लक्ष्मी जी को रसगुल्ला देकर मनाया जाता है, तो हम अपने श्रोताओं से ये कहेंगे कि अगर घर में जो है धर्मपत्नी थोड़ी नाराज हो गई है तो आप परेशान ना हो, और अगर आपका कोई भी संबंधी आपसे नाराज है तो आप प्रभु के लीला से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हम उन्हें मनाएं।
3: On that very sweet note that you mentioned, we can see that the rath has started moving again and there's a huge crowd here and which is making the movement of the rath very difficult because every devotee is so full of devotion, so full of fervor today that the sevadars who are going and who are pulling the ropes of the holy chariot, they are finding it extremely difficult to move ahead because every devotee wants to just catch a glimpse of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra. And the Sri Neelachala Seva Sangha authorities have made elaborate arrangements for the devotees who have come here, and everything is so much in order since the time that we arrived here, and the rath will move from here and go towards Sri Aurobindo Marg. The authorities are making an appeal to the people to please give way for the rath to move ahead.
0: जी, और जैसे जैसे रथ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भक्तगण भी रस्सी को खींचते हुए इस पूरे पथ पर रथ को आगे बढ़ाएंगे। और हम बात कर रहे थे कि कैसे प्रभु ने लक्ष्मी जी को रसगुल्ला देकर मनाया, तो यहाँ पर जो मंदिर के सेवादार हैं और श्री नीलाचल सेवा संघ है, उन्होंने भक्तगणों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है और प्रभु कृपा से कनिका यानी खिचड़ी, दाल, हलवा, अन्न, दाल, सब्जी, खटाई, खीर का प्रसाद जो है वो भक्तगणों के लिए तैयार किया गया है। और इसमें स्वयं सेवक जो हैं वो बड़ी भूमिका निभाते हैं, स्वेच्छा से वो प्रभु की सेवा में यहाँ आते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। और ये जो सेवादार हैं मंदिर समिति के जो सदस्य हैं, हम आपको बताएं कि अलग अलग क्षेत्रों में ये विभिन्न पदों पर आसीन है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच से प्रभु की सेवा में आकर ये स्वेच्छा से जो कार्य कर सकते हैं वो करते हैं लगातार। और सभी के प्रयासों से इस तरह के बड़े बड़े आयोजन जो हैं वो सहज रूप में, सफल रूप में यहाँ पर किए जाते हैं, क्योंकि स्वयं सेवक भी हैं, भक्तगण भी हैं और प्रशासन का सहयोग भी समय समय पर मिलता रहता है। तो यहाँ पर डॉक्टर मृत्युंजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज का जो मौसम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हर समय रथ यात्रा जो है जब प्रतिवर्ष होती है उस समय ऐसा ही कुछ मौसम रहता है?
2: धन्यवाद निलम जी, जैसे आपने बता रहे थे आज के मौसम के जानकारी, हम सुबह बताए थे कि फोरनून में स्काई क्लियर रहेगा, आसमान साफ रहेगा, धीरे धीरे दोपहर तक बादल दिखाई देगा, अभी बादल भर रहे हैं, शायद ऐसे ही जगन्नाथ की इच्छा है। जब अभी रथ यात्रा शुरू होने वाला है थोड़ी से स्काई कवर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से भक्तजन खड़े हुए हैं, जय जगन्नाथ। आप सभी को देखें, छोटे बच्चे शुरू कर बूढ़े तक और सभी लेडीज एंड जेंट्स और सभी प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी रथ यात्रा का जो दृश्य है, जो विशाल दृश्य है, जो अपूर्व रूप है, इसको देख रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई वर्षा का संभावना नहीं है, मगर ऐसे आंशिक भाव में आसमान ऐसे ही क्लाउडी रहेगा, जो हमारे भक्तजनों के लिए अच्छा है। मैं आपको ये जो आपने प्रसाद के बारे में बोल रहे थे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भगवान श्री जगन्नाथ को हम बड़ा ठाकुर बोलते हैं, उनका जो मंदिर होता है उनको बड़ा देवल बोलते हैं, उनका जो प्रसाद होता है उनको हम महाप्रसाद बोलते हैं। और महाप्रसाद जहाँ दिया जाता है वहाँ कोई जात पात, ऊंच नीच या भेदभाव नहीं दिखा जाता है, सभी इकट्ठा मिलकर एक से दूसरे को छोड़ा के भी प्रसाद लेते हैं। और ऐसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि पूरा काल में हमारा देश में भी बहुत कैस्टिज्म था, जातिगत भेदभाव था, दासिया बाउरी ऐसे एक भक्त थे जो नारियल लेकर आए थे भगवान श्री जगन्नाथ को देने के लिए, मगर उनका नारियल को कोई नहीं ले रहे थे, वो भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा तब रुक गया बड़दांड में, और उनको आदेश हुआ कि मेरा भक्त वहाँ खड़े हैं उनसे नारियल लाइए, वो नारियल उन्होंने रिसीव किए और फिर भक्त बारिया दासिया बावरी को आशीर्वाद दिए। वो ये है लीला है भगवान श्री जगन्नाथ की, जिनकी कृपा में पूरे विश्व में शांति और प्रगति आगे बढ़ता रहता है।
0: जी, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हम जब पूरी धाम के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चमत्कृत करने वाली बातें हमें वहाँ के बारे में पता चलती हैं, जैसे कि मंदिर ध्वज जो है वो हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, और महाप्रसाद जो है वो बनाया जाता है, वो अलग अलग हांडी में बनाया जाता है, तो सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है, और ऐसा कहा जाता है कि महाप्रसाद जो है वो प्रत्येक भक्त को वहाँ पर मिलता है, किसी भी वक्त जाए, और जो प्रसाद है वो कभी कम नहीं पड़ता है महाप्रसाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम कहीं भी जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा भाव से तो लेते हैं, लेकिन क्या जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने की कोई अलग विधि भी है?
2: जगन्नाथ का जो प्रसाद है उनको महाप्रसाद हम बोलते हैं, जैसे आपने बताया ऐसे एक संस्कृति है, ऐसे एक देवता है जिसके प्रांगण में सभी मिलकर, जिसको हम आनंद बाजार बोलते हैं, सभी इनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप शायद आश्चर्य होंगे, हर दिन प्रसाद चढ़ता है, और प्रसाद जो महाप्रसाद हम बोलते हैं वो लगभग 60 पौटी, मैंने 60 पौटी, एक पौटी 10 किलो होता है, दैट 6 क्विंटल, 600 केजी, और 6 क्विंटल राइस हर दिन पका जाता है, फिर इसके साथ साथ और सादे सब्जी होता है। पर इसके साथ साथ जो आप बताया जो प्रक्रिया में और प्रसाद बना जाता है वो पूरा साइंटिफिक है। जो हम अभी समझते हैं, जब हम 10 या 12 कलश को एक के बाद ऊपर रखते हम खाना पकाते हैं, सो इसके अंदर जो ऊपर का जो कलश होता है वो पहले पक जाता है, नीचे जो कलश होता है वो बाद में पकता है। ये जो प्रक्रिया है इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन प्रक्रिया में हीट जो नीचे वाले कलश है वहाँ से ऊपर वाले कलश को ट्रांसफर होता है, फिर ऊपर वाला कलश से नीचे को ट्रांसफर होता है, ऐसे सभी साथ में फाइनली पका जाता है।

0: और ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सो जगन्नाथ संस्कृति इसलिए सिर्फ सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक स्थितियों को विचार नहीं करते, आधारित नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप में भी आधारित है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि 1979 में सरस्वती पूजा वाले दिन यहाँ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी प्रभु विग्रह की, और जब से स्थापना हुई है तब से हर साल यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, और समय के साथ साथ ये रथ यात्रा जो है वो और भी भव्य होती गई है। लगातार 7 दिन तक उस समय अनुष्ठान यज्ञ चला था और पतित पावन प्रभु ने अपना स्थान ग्रहण किया इस मंदिर में। लक्ष्मी जी का भी यहाँ पर स्थान है, और साधारण दिनों में भी यहाँ भक्तगण जो हैं वो लगातार आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। और हौज खास दिल्ली का एक जाना माना स्थान है, नई दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पर विदेशियों का भी लगातार आवागमन रहता है इस मंदिर में, वो दर्शन करते हैं। और भक्त वत्सल प्रभु जगन्नाथ बिना किसी भेदभाव के हर भक्त पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। और मंदिर स्थापना से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं जो मंदिर समिति के द्वारा आकाशवाणी को पता चली हैं, बेहद रोचक कि किस तरह से सभी ने सब प्रयास यहां पर पहले स्थान लिया और उसके बाद प्रभु से आग्रह किया कि वो यहां पर अपना स्थान ग्रहण करें।
2: Yes, you are absolutely right, Neelam, and this is something which we should share with our dear listeners, because somewhere in 1957 some laborers had come from Odisha, and very unfortunately they were robbed of their belongings. Then some people informed them to visit Sri Duryodhan Pradhan and Sri Brahmarvar Pradhan, and they went to their house and they narrated what had happened to them, and then Sri Duryodhan Pradhan and Sri Brahmarvar Pradhan, they arranged for their travel back to Odisha, and they also gave them food and shelter for certain days. So while going back, those laborers, they presented Sri Duryodhan Pradhan and Sri Brahmarvar Pradhan with very small statues of idols of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra. So Sri Duryodhan Pradhan and Sri Brahmarvar Pradhan, they were astonished, because when they received the small idols of the Lord, they thought that they should set up a temple, because they have to pray to the Lord. And that is how it started. The story started in 1957 with the small idols of the Lords, and then they established Mahaprabhu in 1961, 4 years, and then the Neelachala Seva Sangha was registered in 1967 with the help of Sri Pratap Kesari Dev, the then Maharaja of Kalahandi. And then the 1970, the ground floor of the temple, of the Sri Jagannath temple, was completed with the Mausi Ka Ghar, and now here stands this beautiful Sri Jagannath temple. And since 1979, as you rightly mentioned, that the Sri Jagannath Rath Yatra is being carried out on an annual basis, and it started with 5,000 people, and now the crowds swell to about 3 lakhs every year, and we are witness to the large number of people who have come here just to catch a glimpse of the Lord. And we can see that every person who is present here is full of fervor, full of devotion, and every lip is chanting Jai Jagannath.
1: जय जगन्नाथ के नारे यहाँ चहुओं ओर सुनाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि मंदिर स्थापना की भी अपनी एक कथा है कि किस प्रकार से प्रण लिया गया और फिर प्रभु से आग्रह किया गया, प्रभु के विग्रह यहाँ पर आए। तो दुर्योधन प्रधान और भ्रमरवर प्रधान जी का नाम यहाँ पर जुड़ा है। 1955 से शुरुआत हुई थी मंदिर स्थापना की, 1960 में प्रण लिया गया कि प्रभु का मंदिर यहाँ स्थापित किया जाएगा, 1961 में प्रभु के विग्रह यहाँ पर आए। और आपको बताएं कि ओडिशा में जगन्नाथपुरी धाम में जब नवकलेवर होता है, जब ब्रह्म पदार्थ जो है वो बदला जाता है और प्रभु विग्रह नए बनाए जाते हैं, उसमें वो स्थापित किया जाता है, तो जब प्रभु विग्रह का वहाँ निर्माण हुआ, वहाँ से जो लकड़ी बची थी उसी लकड़ी से यहाँ पर जो विग्रह है वो

0: हुआ और पुरी के राजा उड़ीसा वासी जो थे उन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जैसा कि हमने कहा कि 1989 में सरस्वती पूजा के दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो इस प्रकार से प्रभु ने स्वयं ये स्थान चुना ऐसा माना जाता है और भक्तगण यहाँ आशीर्वाद लेने आते रहते हैं। तब से लेकर आज तक लगातार रथ यात्रा हर साल आयोजित की जाती है। 5,000 लोगों से ये आयोजन शुरू हुआ था, आज 2.5 से 3 लाख लोग इस आयोजन में श्रद्धा पूर्वक जुड़ते हैं। और आपको बताएं कि कोरोना काल में कोविड के दौरान बहुत ही कठिन समय जब पूरी दुनिया देख रही थी, उस समय भी रथ यात्रा जो है वो क्योंकि जमघट नहीं हो सकता था, भक्तगणों को एक साथ एकत्र होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन रथ यात्रा ना रुके उसका ध्यान रखते हुए प्रतीकात्मक रूप में रथ यात्रा की गई। प्रभु को उनके स्थान से, विग्रह जो थे उनके स्थान से हिलाया गया और पुनः वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जैसे होता है प्रभु ने अपना स्थान ग्रहण किया। तो ये माना गया कि ये नियम किसी भी प्रकार ना टूटे, लेकिन जो हमारे व्यवहारिक जीवन के नियम हैं वो भी बने रहे और सभी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया। और एक बात और, हमने कोविड काल में काढ़े का महत्व जाना है, पूरी दुनिया ने समझा है कि किस तरह हमारी रसोई में ही हमारा उपचार जो है वो उपलब्ध है। हमारी जगन्नाथ जी अपनी लीला के माध्यम से बहुत समय पहले से ये संदेश देते आए हैं, हमारे प्रभु बीमार होते हैं कुछ दिन के लिए, सबसे अलग रहते हैं और फिर काढ़े का सेवन करते हैं लगातार और फिर स्वस्थ होकर भक्तगणों के बीच में आ जाते हैं। तो उनकी ये लीला भी हमें ये संकेत देती है कि जीवन में कभी कभी कठिन समय भी आता है, लेकिन उसका सामना करते हुए हमें पुनः अपनी दिनचर्या जो है उसमें आगे बढ़ना होता है।
1: Yes, you are absolutely right, Neelam. And we all know that the mention of this magnificent Rath Yatra of Lord Sri Jagannath is mentioned in the Skanda Puran. And we also know that many, many centuries ago, the Chinese traveler Fa Yan traveled to India and he also mentioned about this magnificent quote-unquote chariot festival and in his writings. So what would you like to say on this, Dr. Mahapatra?
2: सही बताया आपने कौशिक जी, जो जगन्नाथ संस्कृति है वो सिर्फ भारत वर्ष के अंदर सीमित नहीं है। आज भी आप दिल्ली नगरी में, हसकस शहर में आप देख पाएंगे कैसे सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित है। सभी लोगों के अंदर हमारे प्रभु महाप्रभु श्री जगन्नाथ भाई बड़ोदेव और माँ सुभद्रा के साथ रथारूढ़ है और उनकी अपूर्व शोभा है कि उनका क्या वेश है आप इसको वर्णन नहीं कर पाएंगे। सभी विमोहित है और सभी व्याकुल है रथ को छूने के लिए, रथ को खींचने के लिए और इसका आनंद लेने के लिए और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। अभी रथ के ऊपर देखते हुए वामन रूपी श्री जगन्नाथ को ये बोला जाता है कि रथे तु वामन दृष्ट्वा सर्व पाप क्षयं जाति पुनर्जन्म न विद्यते। जो रथ के ऊपर वामन के रूप में श्री जगन्नाथ को देख लेता है तो उनका पुण्यता प्राप्त हो जाता है। और ये जो सौंदर्य है इसको बोलते हुए बोलूँगा कि चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ सभीत कौस्तुभ पद्मनाभ गंधर्वस्य चंद्रसुरस्य विलोचन जगन्नाथ रघुनाथ नीलाद्रिह सुपारि हरि दीनबंधु दया सिंधु कृपालु च रक्षक। भगवान श्री जगन्नाथ का बहुत सारे वेश होता है, जैसे कि आप अभी बड़ी बामन वेश आप बोल रहे हैं, उसके साथ साधा वेश भी होता है, बड़ा श्रृंगार वेश होता है, चंदन वेश होता है, गणपति हाथी वेश होता है, सुना वेश होता है, वनभोज वेश होता है।
1: जी जी बिल्कुल डॉक्टर महापात्र, एंड एज यू कैन सी दैट द चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ हैज वंस अगेन स्टार्टेड इन दिस मैग्निफिसेंट रथ यात्रा। वी से नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ।
2: जय जगन्नाथ।
0: भक्त वत्सल जगन्नाथ प्रभु भक्तों को दर्शन देते हुए अपने रथ पर अब सवार हैं और भक्तगण जो है इस रथ को खींचते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। हम भी इस भाव से भरे हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से आप ये सजीव प्रसारण सुन रहे थे। अपने तकनीकी दल के सदस्यों अशोक मिश्रा, शक्तिधर ध्यानी, कमल सिंह और हेमराज मीणा के साथ साथ ही श्री नीलाचल सेवा संघ के सचिव रविन्द्रनाथ प्रधान और मीडिया कोऑर्डिनेटर शिवाजी पात्रों के साथ विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर

0: प्रमोद कुमार वत्स और के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से आपसे अनुमति लूंगी। साथ ही आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में विशेष प्रसारण में हमें मार्गदर्शन मिला श्रीमती मनीषा जैन का और ओबी प्रभारी थे श्रीमती निशा भारद्वाज और राजलक्ष्मी स्वाई। और इस कार्यक्रम में आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ रहे प्रभु सेवा में श्री मृत्युंजय महापात्रा, आप जो हैं माननीय महानिदेशक IMD, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से पुनः आप सभी को इस रथ यात्रा के विशेष अवसर पर बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए यही कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, प्रभु जगन्नाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार, जय जगन्नाथ।
1: अभी आप श्री जगन्नाथ मंदिर हौसखास नई दिल्ली से रथ यात्रा महोत्सव का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। ये विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की FM रेनबो चैनल से प्रसारित किया गया है और अब प्रस्तुत है आपके लिए हमारा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम NCERT पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। चलिए हमेशा की तरह करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर से विचार से, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी का।
2: ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: और छत्तीसगढ़ लुकाउपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी जी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी।
2: सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: आप सबके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक विकास की।
2: कल हमने बात की थी मिस्र की सभ्यता की और जाना था कि कैसे उन्होंने पेपरस को लेखन सामग्री बनाया और लेखन की विधा का विकास किया। आज के एपिसोड में हम खोलेंगे एक और नया और बेहद रोचक अध्याय।
1: तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे भारत की, यानी अपने देश की। तब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। हम सभी जानते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ
2: जी।
1: लेकिन आइए अब जानते हैं कि भारत में लोग लिखते कैसे थे।
2: प्राचीन भारत में ज्ञान का संरक्षण मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से होता था,
1: यानी वाचिक परंपरा
2: जी। वेदों को गुरुओं ने हजारों वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित रखा। धीरे धीरे लेखन का प्रचलन बढ़ा।
1: श्रोताओं, भारत में लिखने के लिए भोजपत्रों का इस्तेमाल हुआ। भोजपत्र एक विशेष प्रकार का लेखन पत्र था जो भोज या भूर्ज वृक्षों की छाल से बनाया जाता था। बता दें कि ये वृक्ष हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है
2: जी।
1: अब प्रश्न ये उठता है कि भोजपत्रों को लिखने योग्य कैसे बनाया जाता था। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: अजीत जी, भोज या भूर्ज वृक्ष की बाहरी छाल को सावधानी से निकाला जाता था। उन्हें सुखाकर और समतल बनाकर उन पर वनस्पति से बनी स्याही से लिखा जाता था
1: जी। श्रोताओं, भोजपत्रों पर कई प्राचीन पांडुलिपियां लिखी गईं। जब कागज नहीं था तो भोजपत्र ही विद्वानों का नोटबुक था। भोजपत्र पर ऋग्वेद, अथर्ववेद और कश्मीर क्षेत्र में राजतरंगिणी की मूल प्रतियां मिली हैं। अनेकों बौद्ध ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। कई प्राचीन नाटक भी भोजपत्रों पर लिखे मिलते हैं।
2: तो श्रोताओं, भोज वृक्ष की छाल पर सिर्फ शब्द ही नहीं लिखे गए, उनमें भारत का इतिहास, धर्म, संस्कृत, साहित्य, गणित, ज्योतिष और दर्शन भी सुरक्षित किया गया।
1: और हाँ श्रोताओं, भोजपत्र के अलावा दक्षिण भारत में ताड़ पत्र पर भी लिखा जाता था। इसके अलावा ताम्र पत्र और शिलालेख भी हमें मिलते हैं।
2: लगभग पहली दूसरी शताब्दी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मिस्र में स्क्रॉल बनाए जाते थे, पन्नों पर भी लिखा जाता था। लेकिन अब मानव सभ्यता में शुरू हुआ एक और नवाचार
1: जी।
2: लोगों ने पन्नों के किनारों को जोड़कर पुस्तक बनानी शुरू की। अजीत जी, उन पुस्तकों को क्या कहा गया?
1: विमलेश जी, उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा गया, जो आधुनिक पुस्तक का पूर्वज है
2: जी।
1: कोडेक्स प्रारूप से बहुत से लाभ हुए, जैसे किसी भी पृष्ठ पर तुरंत पहुंचा जा सकता था, पन्नों के दोनों ओर लिखा जा सकता था
2: और अधिक से अधिक जानकारी एक ही पुस्तक में संग्रहित की जा सकती थी
1: जी।
2: कोडेक्स का विकास रोमन साम्राज्य में हुआ। आइए जानते हैं कुछ और बातें।
1: मध्य युग में पुस्तकें चर्म पत्रों पर भी लिखी जाती थी
2: जी।
1: यूरोप के मठों में विशेष कक्ष होते थे जिन्हें स्क्रिप्टोरियम कहा जाता था। यहाँ लोग रात दिन बैठकर मूल पांडुलिपियों की नकल करते थे
2: जी।
1: लिखने या नकल करने वालों को स्क्राइब्स कहा जाता था।
2: नकल करने वालों को बहुत सावधान रहना होता था। वे धीरे धीरे शब्द ब शब्द कई बार ऊंचे स्वर में पढ़कर और उन्हें दोहरा दोहरा कर लिखते थे, क्योंकि कोई गलती न हो जाए। क्योंकि गलती हो जाने पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें चाकू से खुरचना पड़ता था, जिससे कागज या चर्म पत्रों को नुकसान होता था
1: जी। तो धीरे धीरे कोडेक्स प्रारूप ने पुस्तकों का रूप धारण किया और इनसे मानव सभ्यता के पठित ज्ञान में और अधिक वृद्धि हुई।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: कोडेक्स किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें विश्वव्यापी समस्या जलवायु परिवर्तन के बारे में उदाहरणों सहित सविस्तार समझाया गया है और बताया गया है कि इसका निदान किन किन उपायों से हो सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन।
3: साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश, आप सबका स्वागत है हमारी रेडियो गोष्ठी में। आज की गोष्ठी का विषय है धरती करे पुकार। साथियों, इन दिनों सभी संचार माध्यमों में एक विषय छाया हुआ है और वो विषय है जलवायु परिवर्तन। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो खास मेहमानों को बुलाया है, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: साथियों, जलवायु परिवर्तन एक गंभीर पर्यावरण संकट है जिससे आज सारी दुनिया जूझ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर नमिता से। तो नमिता जी, पहला प्रश्न ये है कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या इसे मौसम का परिवर्तन कहेंगे?
5: सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है।
3: जी,
5: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन बिल्कुल अलग है।
3: जी, लेकिन वो कैसे?
5: जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु।
3: जी,
5: यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है।
3: जी,
5: लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड।
3: जी,
5: तभी तो दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और विचार विमर्श के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।
4: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर एक वैश्विक मंच बनाया है जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश शामिल हैं। और जानते हैं, इस मंच की स्थापना सन 1992 में हुई थी।
3: जी,
4: वैसे जलवायु परिवर्तन कई कारणों से क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, लेकिन सारांश में कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
3: जी डॉक्टर दिवाकर, अब मेरा प्रश्न आपसे है।
4: जी,
3: आप हमें बताइए कि जलवायु परिवर्तन के संकेत क्या क्या है, यानी हम कैसे जाने कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है?
4: बहुत अच्छा प्रश्न है दिनेश जी। देखिए, इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार

0: और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे
1: जी।
0: और स्थायी हो जाए तो हम इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
1: जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमारे जमाने में मौसम ऐसा नहीं था, अब बिल्कुल बदल गया है।
0: जी
2: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण लीजिए, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम या पहले से बहुत ज्यादा हो गई है
1: जी।
2: और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में या वैश्विक हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे
0: जी। जैसे कि अनियमित बारिश और बाढ़ का आना, ग्लेशियर्स का पिघलना और इनके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना।
1: लेकिन दिवाकर जी, इसके कुछ कारण तो होंगे।
0: बिल्कुल दिनेश जी, कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य कारणों में से एक है ग्रीन हाउस गैसों यानी हरित गृह गैसों का बढ़ना। मैं अपने श्रोताओं को यहाँ पर ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
1: अच्छा
0: जी, और इससे जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: डॉक्टर नमिता
2: जी,
1: हमारे विद्यार्थी श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं।
2: इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है,
0: और इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसों की बात है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख गैसें हैं जी। तो इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती।
2: एक और उदाहरण लीजिए, जैसे धूप में खड़ी कार कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है
0: जी।
2: ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए ऐसा ही काम करती हैं।
1: अच्छा,
2: और फिर होता ये है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ तूफान बढ़ जाते हैं, इससे जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: बहुत सुंदर उदाहरण दिया। तो आप बात करते हैं जलवायु परिवर्तन होता क्यों है।
0: देखिए दिनेश जी, सबसे बड़े कारणों में से एक है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना। वैसे नमिता जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर है कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
2: और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा
0: जी।
2: और तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इससे बाढ़ तो आएगी ही।
1: बिल्कुल,
2: समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा।
0: एक और जरूरी बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा
1: जी।
0: शोध बताते हैं कि पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जलवायु परिवर्तन हुए लेकिन बहुत कम
1: जी।
0: लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी कोयला इत्यादि को जलाने, वनों की कटाई करने, वाहनों और उद्योगों के बढ़ने के कारण बहुत अधिक हुआ, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ा
1: जी। इन दिनों अक्सर कहा जाता है कि कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग ना करें। क्या वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं?
2: जी बिल्कुल, वाहनों, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कारखानों और भारी मशीनों से भी बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इनका उपयोग आप संतुलित तरीके से करें
1: जी। तो आइए अंत में जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है।
0: देखिए दिनेश जी, पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: बिल्कुल,
0: और यदि पेड़ काटे भी जाएं तो काटने की तुलना में और अधिक पेड़ लगाए जाएं।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात ये है कि हम वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग करें
0: जी,
2: और जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का ही उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो आइए अब जानते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं।
2: साथियों, समाचारों में आप अक्सर बाढ़, तूफानों, भूकंप इन सब बातों की चर्चा सुनते रहते हैं। इसका कारण बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन ही तो है।
0: जी
1: बिल्कुल।
0: और दिनेश जी, यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं से एक विशेष बात साझा करना चाहूँगा।
1: जी।
0: क्या आपको पता है कि भारत के अनेक क्षेत्रों में तापमान की वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? भाई, अब तो ठंडे कहे जाने वाले पहाड़ी इलाकों का भी तापमान बढ़ गया है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। अब उदाहरण के लिए 2025 के बाद से हमारे देश का औसत तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है।
0: जी।
2: जिसके कारण सर्दी सामान्य से बहुत कम थी और गर्मी सामान्य से ज्यादा।
1: ये तो बड़ी गंभीर बात है और ऐसा दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। अभी समय है इस पर गंभीरता से विचार करने का और उस पर अमल करने का।
0: जी।
1: कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर नमिता और डॉक्टर दिवाकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शिक्षक, कुछ नए आयाम।
4: इस कार्यक्रम में एक आदर्श शिक्षक की भूमिकाओं की चर्चा की गई है और कतिपय शिक्षण प्रविधियों के बारे में बताया गया है, जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों को नवाचारी विधियों के प्रयोग से बच्चों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं।

0: अक्सर अध्यापक ये प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा में मूल परिवर्तन क्या हो रहे हैं। वही विद्यालय हैं, वही शिक्षक हैं, वही पुस्तकें हैं, वही विषय हैं, वही सब कुछ है, लेकिन इन समानताओं में भी कहीं कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। आइए हम इसी संदर्भ में दो कक्षाओं का अवलोकन करें।
1: आप जैसे किताबें निकालो, चलो चलो अपने अपने पार्ट निकालो
2: जी,
1: मैं भी कह रहा हूँ, चलो शाबाश। हाँ गोपाल, इसको बोलो, हाँ इधर मेरी तरफ देखिए, हाँ शाबाश। अब मैं जो बोलूंगा मेरे पीछे पीछे दोहराना।
2: जी गुरुजी,
1: समझ गए
2: जी।
1: अच्छा शुरू करते हैं हम।

0: गुरु जी,
1: हाँ?
0: पानी का उपयोग घर के अलावा बाहर भी तो करते हैं, फिर किताब में केवल घर ही क्यों लिखा है?
1: तुमको कई बार कहा है कि जो किताब में लिखा है उसको पढ़ो और बीच बीच में मत बोलो।
0: जी
1: गोपाल
2: जी,
1: बेटा आगे तुम पढ़ाओ।
2: जी गुरुजी, पानी
3: पानी,
2: कुओं
3: कुओं,
2: नदियों
3: नदियों,
2: तालाबों
3: तालाबों
2: एवं झरनों से मिलता है,
3: एवं झरनों से मिलता है।
0: गुरुजी, झरना क्या होता है? मुझे तो बहुत सारे शब्द समझ में ही नहीं आते।
1: फिर बीच में बोले, आगे पढ़ो, चलो चलो शाबाश।
2: गंदे पानी के प्रयोग से,
3: गंदे पानी के प्रयोग से
2: अनेक बीमारियां हो जाती हैं,
3: अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
4: गुरुजी,
1: हाँ बोलो।
4: पानी गंदा कैसे हो जाता है?
1: बीच बीच में ना बोलो, तुम अपना अपना पाठ पढ़ो। चलो
2: जी,
1: चलो
2: जी,
1: ठीक है बैठो, इससे पीछे हो जाओ। चलो अपना पाठ पढ़ो।
5: आइए अब हम एक और कक्षा में चलें।
6: एकम पांच, पांच दुनी दस।
7: नमस्ते
8: नमस्ते
9: नमस्ते नमस्ते बच्चों, नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं, ठीक?
2: जी।
9: अच्छा तो बच्चों बताओ, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है?
10: हमारे गांव में दो कुएं हैं, एक तालाब भी है।
9: अच्छा
2: मास्टर जी, हमारे मामा के गांव में नदी बहती है, नदी उसी से पानी लाते हैं।
9: शाबाश, बिल्कुल ठीक
0: मास्टर जी, वर्षा से तो पानी पानी हो जाता है।
9: हाँ ये भी ठीक है।
11: मास्टर जी, हमारे घर में तो नल है।
9: शाबाश। अरे बच्चों, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। इन साधनों के अलावा पानी और भी कई स्रोतों से मिलता है, जैसे झरने, झील, तालाब, बावड़ी आदि।
2: मास्टर जी,
9: हाँ हाँ बोलो।
2: क्या हम सागर और बादलों को भी पानी का स्रोत मानेंगे?
9: हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा आप सब बच्चे ये लिखें कि पानी का प्रयोग किन किन कामों में करते हैं, ठीक?
2: जी मास्टर।
9: लिखो फिर, सब लिखो।
5: सुना आपने दोनों कक्षाओं के अंतर को? पहली में भय का वातावरण था और दूसरी में आश्चर्य, खोज, जिज्ञासा और आनंद का। आज के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की यही भूमिका उभर कर आई है। इस भूमिका में बच्चों को सहज समझने और सीखने के अवसर मिलते हैं। शिक्षण के ऐसे अवसरों को अब श्रीमती श्याम की कक्षा में देखें, जिन्होंने अंग्रेजी सीखना बच्चों के लिए एक खेल बना दिया है।
12: दीदी
13: बोलो मालती।
12: दीदी मुझे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ समझ में ही नहीं आते।
13: तुम शब्दकोश में अर्थ ढूंढो और उसके अभिप्राय को समझो।
12: हाँ दीदी। अब मैं एक कॉपी में सारे मुश्किल शब्द लिख लूंगी।
13: ठीक।
12: फिर उनके अर्थ भी शब्दकोश में से देखकर लिख लूंगी।
13: हाँ फिर तो तुम पाठ को सीखने के प्रयास में उन शब्दों का अभिप्राय भी समझ सकोगी।
12: जी।
13: इसके बाद तो तुम्हारे पास अपना ही एक अच्छा खासा शब्दकोश तैयार हो जाएगा।
12: वाह, एकदम मेरा अपना शब्दकोश।
13: हाँ।
5: अब जिस शब्द पर अटको शब्दकोश देखो और समझो। शब्दकोश सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, शकुंतला श्याम भी देखती हैं। शकुंतला जी की ये शैक्षिक विधि थी जो छात्रों के स्तर को सहजता से ऊपर उठाने में काफी हद तक कामयाब थी। उनकी एक और शैक्षिक विशेषता थी, वो शिक्षण में एक मूलभूत सिद्धांत का प्रयोग करती थी। वो सिद्धांत था सीखने के प्रक्रम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। वो अपनी कक्षा को एक खोज यात्रा में बदल देने में माहिर थी। एक अन्य अध्यापिका श्रीमती इंदु बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग बहुत रोचक है। इंदु जी का पाठ हमेशा संवाद से शुरू होता है, यानी इंदु जी और बच्चों की बातचीत से। ये है इंदु जी के दिन की शुरुआत।
7: नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी।
8: नमस्ते, नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
14: दीदी ये,
8: अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं ये। प्रवीण कहां से लाए तुम ये फूल?
4: दीदी ये फूल प्रवीण अपने एक बगीचे से लाया है।
8: अच्छा
11: दीदी इसके घर में बहुत सारे फूल लगे हैं।
8: सच? प्रवीण इन फूलों के क्या क्या नाम है बताओ तो जरा।
14: गुलाब।
8: गुलाब बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण और कौन कौन से फूल लगे हैं तुम्हारे यहाँ?
7: दीदी मैं बताऊँ?
8: नहीं नहीं नहीं सिर्फ प्रवीण बताएगा। हाँ प्रवीण बताओ।
14: गुलाब।
8: गेंदा।
14: चमेली। और चमेली।
8: चमेली।
14: सूरजमुखी।
8: सूरजमुखी शाबाश।
5: तो आइए इंदु जी से ही सुने उनके पाठ तैयार करने का ढंग। हाँ इंदु जी आप जरा बताइए कि पाठ कैसे तैयार करती हैं?
8: देखिए मैं बच्चों के अनुभव को ही पाठ का आधार मानती हूँ। मेरे छात्र पहली दूसरी और तीसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ बच्चे जैसे प्रवीण बहुत शर्मीले हैं और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि प्रवीण को खास तौर पर कक्षा से जोड़ा जाए। आपने सुना ना अभी कि मैंने प्रवीण से ही फूलों के नाम पूछे। उसके बाद बात चली पौधों के हिस्सों के बारे में। स्कूल के आंगन में जाकर हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। अब सब बच्चे जानते हैं कि पौधों में जड़ तना टहनी पत्ते फूल और फल होते हैं।
5: जी जी
8: आप जानते हैं हमारी प्रयोगशाला है हमारे स्कूल के आसपास का क्षेत्र।
5: स्कूल के आसपास का क्षेत्र?
8: जी कभी कभी हम सब घूमने निकलते हैं। मैं बच्चों को दलों में बांट देती हूँ। एक दल रास्ते में दिखे पौधों के नाम लिखता है, एक दल पत्तियों के नमूने जमा करता है और सबसे छोटे बच्चे रास्ते में दिखे पक्षियों को गिनते हैं।
5: बहुत अच्छे।
8: इस तरह सभी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। लौटकर हम बच्चों से बात करते हैं कि किस मौसम में कौन से पौधे होते हैं और कौन से पक्षी दिखाई देते हैं। इस तरह एक दिन में बच्चों ने पौधों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
5: अरे इंदु जी आपने तो गणित वनस्पति शास्त्र और मौसम चक्र सब एक साथ सिखा दिया बच्चों को।
8: और मैंने भी तो सीखा इनसे।
5: जी
8: आपको मालूम है एक पक्षी है जिसके अंडे बहुत ही खूबसूरत हल्के नीले रंग के होते हैं।
5: हल्के नीले रंग के?
8: हाँ मुझे ये बच्चों ने दिखाया।
5: अच्छा
8: मैं जिस इलाके की हूँ ना वहाँ ये पक्षी नहीं होता। और अब बच्चे एक लिस्ट बना रहे हैं।
5: काहे की लिस्ट?
8: कि किस महीने में कौन से पक्षी दिखते हैं इसकी। छोटे बच्चे पक्षियों के पंख जमा कर रहे हैं और बड़े बच्चे बताते हैं कि वो किस पक्षी का पंख है। बस इस तरह से एक एल्बम बन रही है।
5: ये तो बहुत अच्छी बात है।
8: हाँ कभी कभी बच्चे पक्षियों के बारे में कहानियां भी सुनाते हैं।
5: इंदु जी आपका बहुत ही अच्छा ढंग है यूं खेल खेल में पढ़ाने का।
8: देखिए बच्चों की पसंद अगर मालूम हो ना तो बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ शिक्षा दी जा सकती है।
5: ये तो आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दोस्तों इंदु जी की कक्षा के बच्चे इन पाठों को शायद ही भूलेंगे। खुद करके सीखी चीजें हमेशा याद रहती हैं। शिक्षा का ये सहज आनंदपूर्ण ढंग बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति को सहारा देता है। अपने पाठों को जितना हो सके प्रयोगात्मक बनाएं। एक बात का ध्यान हमेशा ध्यान में रहे, बच्चों को उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही काम सौंपें और इस काम को चुनौतीपूर्ण बनाएं। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग पौधों की पत्तियों के आकार और फूलों के रंग ठीक ठीक बता पाना चुनौती भरा है, तो 8 से 10 साल तक के बच्चों की रुचि शायद पक्षियों के घोंसलों के नमूने जमा करने में और कौन से पक्षी कहां घोंसला बनाते हैं ये जानने में होगी। किसी चुनौती को पूरा करना बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत पुष्ट बनाता है। एक काम सफलतापूर्वक करने पर बच्चे में अगले उससे और जटिल काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है। अच्छे और सफल अध्यापक इस गुण को हमेशा इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अगर आपने गौर किया हो तो पता लगेगा कि ये लोग बच्चों को अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को पाठ का आधार बनाते हैं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी पाठ में बनाए रखते हैं। वो बच्चों को खुद करके सीखने और अपने अनुभव को बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यही है अच्छी शिक्षा विधि का गुण।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हाँ जी भैया लिसनर्स आपने कहा लगा मैसेजेस का नाम एकदम इंतजार करना रुके ऐसे होली भी इतिहा का को पूछना है एस एम एस गेट वे की देवा इन्हें हो जाए तो कुनोवा मैसेजेस कांस्टा कुना था क्यों पड़े होली भी आपने अंजी होली भी लिखी ना बताई दी भी नंबर ऐसे 9436805333 9436805333 ये नंबर दे आपने कहा गाना हनी वो मन जला ना मारो अपने गान इडुम कुंड मूवी बार से दुहान लिखी ना बधाई दीवे इन द मीन टाइम आमी जेलवे गाना हंडो बजाई दीवो तो एनी वे म्यूजिक तो आई होले से यदि आकाशवन एफ एम ट्रैक बने 103 MHz से अनि दिया से अगो दूसरा गेट आमी इडो अपने गान लगा एस एम एस रुके दम दी बजाई दिया से बटला हाउस ब्रदर से गेट ला नाम से ओ सागे सागे नेहा गगर दुलसी कुमार आरोपी ब्राग लगा वास्ते

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

हेलो लवलीज, बाल बाल दिल की बासला मूवी में दिया गीत होने लिया दिल उरा पतंगा। यदि अगो दूसरा गीत बजाय दीवा में आरो दो भूमरो से गीत ला नाम तो नोटबुक लगा मूवी बढ़िया से आरो आवाज दिशे गमलगान एंड विशाल मिश्रा।

हाँ जी लवलीज, ब्रस्ते नामला मूवी पर दिया गीत होने से दिल दरियान अंगे दिवारी और दीपाली साथी लगा आवाज थे। अगर ये दूसरा गीत अमी दिया बजाय दिया वो और तो एस पी चौहान लगा मूवी पर दिया से गीत नाम से इश्क गी गाली सोने कम एंड बुजा लगा आवाज थे।

0: All right, listeners, let's see who the next caller is. Hello, good evening.
1: Hello, namaskar, sir.
0: Namaskar, kon bol rahi hai?
1: Ji, sir, hum Dhemaji Assam Zona Nikati Sapur se Bimal Basumatari.
0: Oh, Bimal ji.
1: Ji, sir.
0: Kaise ho?
1: Theek hai, sir. मौसम ठंडा है आज.
0: आज ठंडा ठंडा है ना?
1: जी सर, रात को भी बारिश आया था, सुबह भी थोड़ा बारिश आया, फिर दिन को भी थोड़ा डूब आने से थोड़ा ठीक है, इतना गर्मी नहीं है.
0: आज तो आज क्या किया आपने दिन में?
1: आज सर हम खेत में खेत लगाया था ना, खेत में धान लगाया था, आज खत्म कर दिया हम.
0: अच्छा, तो कितना टाइम लगेगा उसको उबाल, हाउ डू यू से, कितना टाइम लगेगा?
1: ये तो हो जाएगा सर, हम लोग का दो अढ़ाई महीना.
0: अच्छा,
1: इसमें होगा सर करने के लिए.
0: ओके, तो आप अभी आराम कर रहे हैं ना?
1: जी सर, अभी तो थोड़ा फ्री हो गया ना, दुकान में रहेगा.
0: अच्छा, तो आप डिनर करती है ना? डिनर डन?
1: जी सर,
0: डिनर हो गया, डिनर आपका.
1: हाँ.
0: अच्छा, तो आज क्या गीत सुनने चाहोगे आप?
1: सर हमको सुनना है ये बेंगा बॉयज का, ये सबसे अगला गाना उसको बजा देना.
0: बेंगा बॉयज का क्या बजाए देगा? When the sun don't shine or we are going to Ibiza या शालाला?
1: सबसे फर्स्ट गाना वाला बजा दे.
0: अच्छा, डेडिकेशन से कि नहीं
1: है सर? डेडिकेशन
0: चलो बोल दीजिए.
1: सबसे पहले है रुखबिला मीठा है, जोगिंदर रोंकी, सितेंद्र दास, देवासी सजरिका, अमल बसुमतारी, फाइकन मुंडा, रमेश पत्र, अंजलि बसुमतारी, सुनीता बसुमतारी, मंदिरा, और आपको भी, और जितना लाइव सुन रहे सबको भी सर.
0: ओके, शुक्रिया बिमल जी. अच्छा, तो बिमल आप सुनकर एंजॉय करिए. ओके
1: जी सर.
0: ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग.
1: धन्यवाद सर.
0: ओके, बाय बाय. Alright, that was Bimo Basumatri, and he wants to listen to the track called Kiss When the Sun Don't Shine by the Venga Boys. And you can still call into the number 94368053333. We got the show for you till 8:45. You're tuning to Akash Fun FM Trackapan at 103 MHz, listening to our phone-in program.

0: संधि तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी

0: को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉ सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल

0: कल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
1: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
2: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खिसने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खिसने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेसो स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India achieves major milestone bringing over 1 billion citizens under social protection framework. Prime Minister Narendra Modi to flag off country's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana tomorrow. Direct commercial flight begins between Daman and New Delhi, marking new era of air connectivity. World-renowned Rath Yatra of Lord Jagannath in Odisha's Puri draws lakhs of devotees. US expands strikes into northern Iran, disables ship trying to break naval blockade, Tehran retaliates. 2 Indian men boxers clinch gold while 3 bag silver at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And in men's cricket, 2nd ODI between India and host England underway in Cardiff. And now the news in detail. India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandaviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station tomorrow during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the US. The train has been designed to run at a speed of 110 km per hour, but on this section, it will operate at a maximum speed of 75 km per hour. More from our correspondent.
5: India's hydrogen train features a 10-coach configuration, making it among the longest hydrogen-powered passenger trains developed so far. It is powered by 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen-powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation, supporting India's transition to sustainable transport. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Tracker Band.

0: सुना है कि तलवार का
1: तो FM Dragon Band 103 MHz News Music and Entertainment FM 103 MHz